हर नई शुरुआत से पहले अगर गणपति बप्पा का आशीर्वाद मिल जाए तो मंजिलें भी आसान लगती हैं। बुद्धि के दाता, सुख के निर्माता और विघ्नों के हर्ता श्री गणेश जी के चरणों को हम प्रणाम करते हैं।

ऐसे गुर को बल बल जाइए आपे मुकत मोहितारे। वाकी अजिहे सतगुरु अजिहे परमात्मा तो दिल कई बार कुरबान हो जाता है, जो आप भी माया दे बंधना तो मुक्त है अते सानू भी संसार समुद्र तो पार उतारन दी समर्था रखता है।

माँ का दरबार वो जगह है जहाँ खाली झोली भी भर जाती है और बुझी उम्मीद फिर से जग जाती है।

शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है, शिव में ही सारा ब्रह्मांड समाया है। तुसी सर्वन कर रहे हो भगती रस नाल भरपूर प्रोग्राम वंदना।

बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर प्यो दर्शन देखे। इस तुकां दे विच श्री गुरु रविदास जी कहिंदे ने कि हे माधो, कई जन्मां तों मैं तेथों विछड़िया होया हाँ, ए जन्म हुण तेरी याद विच बीते, तेरे दीदार कीतियां बड़ा चिर हो गया है, और तेरी आस दे विच ही मैं जीऊंदा हाँ।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पताए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे, एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तो हनु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीक शुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज़, नाल दी नाल न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप वाले दोस्तों नूं एक बार फिर तो प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं क्या जी, हुण जरा अपने रेडियो सैट की आवाज़ थोड़ी जी चक दिओ, क्योंकि पैन लगा है जनाब रोला रप्पा, प्रोग्राम शुरू होण जा रहा है अड्डी टप्पा। सो बैक टू बैक पंजाबी गीतां दा आनंद तुसीं माणोगे ठीक 9 बजे तक। 9 बजे आगाज़ होएगा थोड़े सब दे मेरे यानी कि सब दे दिलां दी धड़कन, दिल अपना पंजाबी दा, जिथे तुसीं दिल खोल के दिल दीआं गल्लां कर सकदे हो। सो नंबर है 9855-10-10-27 और इस नंबर ते तुसीं व्हाट्सएप मैसेज दे जरिए अपनी गलबात, अपनी विचार, अपनी आवाज़ साडे नाल सांझी कर सकदे हो। सो फिलहाल इंजॉय करदे हां खूबसूरत ट्रैक्स, पंजाबी बीट्स दा एक खूबसूरत सफ़र दा पहला गीत जसी सिद्धू दी खूबसूरत आवाज़ दे विच।
1: देखो नी कुड़ियो किन्ना सोहना मुंडा खड़ा। सुनियो तुहाडा नाम की है?
2: नाम तां मेरा जसी सिद्धू आ। क्यों
1: ते तुसी केड़े शहर च रहने हो?
2: शहर तां साडा जलंधर है।
1: ते तुसी चंडीगढ़ की करदे हो?

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में बौद्ध दर्शन की हमें फिर से याद दिलाई है, हम सभी को प्रेरित किया है कि एक बार फिर से हम बौद्ध दर्शन को समझें और इसकी समसामयिकता क्या है ये जानें। तो आइए, सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो अंश जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बौद्ध दर्शन को एक बार फिर से हम सभी को याद दिलाया है।
2: साथियों, आज दुनिया जिस तरह के तनावों और संघर्षों से गुजर रही है, ऐसे समय में बुद्ध के विचार और भी अहम हो गए हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि शांति हमारे भीतर से शुरू होती है। उन्होंने बताया है कि स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय होती है। साथियों, दक्षिण अमेरिका के चिली में एक संस्था भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ा रही है। लद्दाख में जन्मे ड्रपोन ओजेर रिनपोछे के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। यह संस्था ध्यान और करुणा को लोगों के जीवन से जोड़ रही है। कोची गुआज घाटी में बना स्तूप लोगों को शांति का अनुभव कराता है। वाकई यह देखकर गर्व होता है, भारत की प्राचीन धारा दुनिया तक पहुंच रही है, दूर दराज के लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। साथियों, बौद्ध परंपरा हमें प्रकृति से जुड़ना भी सिखाती है। भगवान बुद्ध को ज्ञान एक वृक्ष के नीचे मिला था। प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं। कर्नाटका में कर्मा मोनेस्ट्री इसका अच्छा उदाहरण है। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र है जो 100 एकड़ में फैला है। इस वन में 700 से अधिक देसी वृक्षों को संरक्षित किया गया है। साथियों, बुद्ध का संदेश सिर्फ अतीत नहीं है, यह आज भी प्रासंगिक है और भविष्य के लिए भी जरूरी है। हम अपने जीवन में शांति बढ़ाएं, करुणा अपनाएं और संतुलन के साथ आगे बढ़ें।
1: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द। और आइए अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने दो विशेषज्ञों को और इनके माध्यम से आज इस विषय के बारे में हम अपनी समझ बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं स्वागत कर रही हूँ प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम जी का। आप बौद्ध अध्ययन विभाग नव नालंदा महाविहार संस्कृति मंत्रालय नालंदा में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं स्वागत कर रही हूँ सतीश कुमार जी का। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका है और बौद्ध दर्शन की जो शिक्षा है वो आप युवाओं तक पहुंचाते हैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। सतीश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत बहुत साधुवाद।
1: बौद्ध दर्शन की जो समसामयिकता है वो क्या है, और ये मैं जानना चाहूंगी प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम आपसे।
4: देखिए, बौद्ध दर्शन स्थान और समय के कारण परिवर्तित नहीं होता, ये समसामयिक है
1: जी।
4: जिसको हम कहते हैं कि स्पेसियो टेम्पोरल गैप के कारण इसमें कोई परिवर्तन आता हो, ऐसा कुछ भी नहीं। अब हम बौद्ध दर्शन है क्या, इस पे बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करते ही कहा था, यदा हवे पातु भवन्ति धम्मा आता पिनो जायतो ब्राह्मणस्य अथस्य कंखा बपयन्ति सब्बा यतो पजानाति सहेतु धम्मं। मतलब, जब धर्म का सही स्वरूप किसी भी ध्यानी के समक्ष प्रकट होता है
1: जी,
4: तो उसकी सारी शंकाएं खत्म हो जाती है और वो जान जाता है कि सारी चीजें हेतु

0: से उत्पन्न है, कारण से उत्पन्न है
1: जी।
0: दूसरी जगह उन्होंने कहा कि द्वे इमे भिक्खवे देशेमि दुखं च दुख निरोधं च, भिक्षुओं मैं केवल दो ही बात करता हूँ, इस संसार में दुख है और उस दुख का समाधान है। इसके बाद उनके एक प्रमुख शिष्य ने भगवान की बात को अपने सहयोगियों के समक्ष रखा, वो था ये धम्मा हेतु पहवा तेसंग हेतु तथागत हुआ
1: जी,
0: तेसंग च यो निरोधो एवं वादी महासमनोती। ये जितने भी इस दुनिया में जो भी कंस्ट्रक्टेड चीजें हैं, जो निर्मित चीजें हैं, वो सभी हेतुओं पे कारण पे आधारित है
1: जी।
0: उस कारण को समझ लो, जान लो, समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध ने ऐसा कुछ कहा जिसकी प्रासंगिकता हर युग में, हर काल में और हर स्थान पे उतना ही समीचीन है
1: जी। यानी हर जगह वो दर्शन अभी भी है, वो शिक्षाएं अभी भी हैं जी। तो सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आधुनिक युग है, इसमें कॉर्पोरेट को और कॉर्पोरेट कल्चर को ऐसा देखते हैं कि भागदौड़ भरा एक कल्चर है और बहुत ही प्रतिस्पर्धा है और जिसमें बस किसी भी तरह हम जो हैं बहुत ज्यादा मोनेटाइजेशन के बारे में सोचते रहते हैं। आप क्योंकि ट्रेनिंग देते हैं बौद्ध टीचिंग्स की कॉर्पोरेट्स को, तो मैं जानना चाहूंगी आपका अनुभव कि किस तरह की प्रतिक्रिया आपको मिलती है और आपको क्या लगता है ये क्यों जरूरी है।
2: जिंदगी की भागदौड़ और धन कमाने की आपाधापी में जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वह मानसिक रूप से विभिन्न प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होता जा रहा है, जिसमें मानसिक तनाव का होना बड़ा ही सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन मानसिक तनाव विभिन्न प्रकार की बीमारियों का मूल कारण बन जाता है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे शुगर हो, चाहे हार्ट डिजीजेज रही हो, यहां तक कि स्ट्रोक, और कई बार तो डिप्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि हम घर परिवार और रोजगार में सामंजस्य स्थापित करने में हम असमर्थ महसूस करने लगते हैं। और केवल कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही नहीं, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी और परिवार को जाने और समझे तो हम पाते हैं कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में भी हम कई मूल समस्याओं का सामना करते हैं जो विशेष रूप से मानसिक रूप से जुड़ी हुई है। हम लोग इफेक्टिव पेरेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस तरह के विचार, उस तरह के थॉट्स हमारे मन में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आज का जो दौर हो गया है, एक तरफ हमें धन कमाना है, दूसरी तरफ हमें बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना है, तीसरी तरफ परिवार और परिवार के सदस्यों में आपस में संतुलन बनाए रखना है, तो इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब मैं धम्म की तरफ देखता हूं, बुद्ध की तरफ देखता हूं, बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों को समझने का प्रयास करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि सबसे पहले मस्तिष्क में विचार ही आते हैं
1: जी।
2: ये जो विचार आते हैं, विचार मनुष्य को प्रेरित करते हैं कोई एक्शन लेने पर, कोई ना कोई तो एक्शन होगा, क्योंकि जो विचार है वो एक बीज के जैसा है, अगर उस बीज को सही पानी मिल जाए, सही मिट्टी मिल जाए, सही मौसम मिल जाए, तो वो एक जो बीज है वो पौधा बन सकता है। लेकिन समस्या ये है, क्या उस बीज को मैं पहचान पाया, क्योंकि अगर वो जहरीला बीज है तो वृक्ष भी जहरीला होगा, और अगर वह अमृत तुल्य बीज है तो अमृत से भरा हुआ होगा, जो केवल हमारे परिवार का नहीं समस्त समाज का कल्याण कर पाएगा। तो वो जो विचार है वो विचार एक्शन में तब्दील होगा, और जब एक्शन होगा तो उसका प्रतिफल भी आएगा, तो प्रतिफल दो तरह के होंगे, या तो सकारात्मक होंगे या नकारात्मक होंगे। अगर तो नकारात्मक प्रतिफल है तो हमारा जो प्रोसेस है वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर हमें सकारात्मक महसूस हो रहा है तो फिर मैं रिपीट करूंगा एक्शन को। लेकिन अगर शिक्षा लेने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है तो शिक्षा को भी मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। तो ऐसे में जब रिपीट एक्शन होता है तो वो आदतों में तब्दील हो जाता है, फिर ये आदतें लगातार बनी रहती हैं, तो ये आदतें आपके चरित्र का निर्माण कर देती हैं। जब चरित्र लगातार बना रहता है तो वह आपके भाग्य का निर्माण कर देता है। तो यही बुद्ध हमें समझा रहे थे कि मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं, अगर वो शुद्ध हैं तो मेरा आने वाला भविष्य शुद्ध हो सकता, पवित्र हो सकता है, लेकिन अगर मेरे विचार अशुद्ध हैं तो मेरा भविष्य भी अशुद्धि की तरफ बढ़ रहा है
1: जी। यानी अपने विचारों को देखना हमें भगवान बुद्ध जो है वो सिखाते हैं जी। और कॉर्पोरेट में हर तरह के जो परिवार हैं वो जुड़े हैं और आप उनको ये सिखाते हैं
2: जी।
1: ये बातचीत जो है बहुत रोचक मोड़ पर है, और मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर इस मोड़ पर आप कौन सा गाना अपनी पसंद का हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
2: मैं यह बताना चाहूंगा कि गाना है, घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डामा डोल, तब मानव तो मुख से बोल बुद्धं शरणं।

0: शामी, अंगुलीमाल फिल्म का गाना है, 1960 में आया था
1: जी। बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है।
2: जब दुख की घड़ियां

इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं, बौद्ध अध्ययन विभाग से हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और साथ ही कॉरपोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से हैं सतीश कुमार जी। तो राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं भगवान बुद्ध की तो एक शब्द जो है वो सहज ही मन में आता है, शांति। जब कभी हम उनकी छवि भी देखते हैं तो वो इतनी शांत स्वरूप है कि उसको देखकर शांति का संचार होता है मन में। और आज का जो युग है आपाधापी का है और हम देख रहे हैं कि

0: के बहुत सारे देश जो हैं वो संघर्षों में घिरे हैं और कई तरह की प्रतिस्पर्धाएं भी चल रही हैं। ऐसे में जो बौद्ध दर्शन है इसका क्या महत्व है और क्या ये आज ज्यादा जरूरी हो गया है या समय के साथ इसका प्रभाव कम होता गया है?
1: आपने अभी दो बिंदुओं पर प्रकाश डाला है
0: जी।
1: एक व्यक्तिगत शांति की बात की और दूसरी बात आपने ये कहा है कि दुनिया में इतनी अशांति फैली हुई है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। देखिए दोनों दो बातें हैं। बुद्धिज्म में, बौद्ध दर्शन में और बौद्ध अध्ययन में इसके तीन सोपान हैं, पर्यत्ति, पटिपत्ति और पटिवेधन। पर्यत्ति के तहत हम थ्योरीज को जानते हैं, पटिपत्ति के तहत हम उसको अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं
0: जी।
1: और पटिवेधन के स्थिति में उस स्तर पे हम रियलाइज करते हैं। तो जब हम अपने मन को, ये चीज उपनिषद में भी है
0: जी,
1: जिसको हम कहते हैं नॉन माइंडिंग प्रोसेस, अमनी भाव। अमनी भाव में होता है कि जब आपका मन निरंतर चिंतनशील है
0: जी,
1: अगर आपके पास एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं है तो आपका चिंतन ज्यादातर निगेटिव दिशा में जाएगा। और जब वो निगेटिव दिशा में जाएगा, नकारात्मक दिशा में जाएगा, तो वो आपके हर सेल को प्रभावित करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो निगेटिव आएंगे और आप पूरी तरह परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए और काउंसलिंग जो है स्पिरिचुअल काउंसलिंग होनी चाहिए
0: जी।
1: हमें किस तरह की चीज सोचना है, हमें क्या सोचना है, ध्यान कैसे करना है और चित्त में शांति कैसे बना के रखना है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक जगह और जब उनके धर्म को कंक्लूड किया गया
0: जी।
1: तो वहां कहा जाता है सब पापस अकरणं, हर तरह के पाप को छोड़ देना, नहीं करना
0: जी।
1: कुशलस्य उपसंपदा, मोरल टेंडेंसीज को बढ़ाना। सचित्त परियोधपनं, प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर ओन माइंड, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। सचित्त परियोधपनं एतान बुद्धान शासनं, यही बुद्धों का शासन है। तो सील का पालन करते हुए, मोरलिटी का पालन करते हुए, मोरल प्रिसेप्ट्स का पालन करते हुए
0: जी।
1: आपको अपने कॉन्शियसनेस को, चित्त को परिशुद्ध कर लेना चाहिए। व्यक्तिगत शांति इसी में निहित है। आपकी दूसरी बात थी
0: जी,
1: विश्व में इतनी अशांति क्यों फैली हुई है। एक कॉन्सेप्ट है विपल्लास। विपल्लास जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं किसी चीज को उल्टा देखना। जिसमें अशांति है उसमें हम शांति ढूंढते हैं, जहां दुख है उसमें हम सुख ढूंढते हैं। आज पूरी दुनिया अगर मानवता पे केंद्रित हो जाए, ह्यूमन सेंट्रिक हो जाए, तो तरह तरह के जो विध्वंसक हथियार हैं वो बनने बंद हो जाएंगे। कोई भी वैज्ञानिक जब कोई विध्वंसक हथियार बनाएगा उसके पहले सोचेगा इसका उपयोग कहाँ होगा। उपयोग मानवों के ऊपर होगा, क्षति किसकी होगी, मानव की क्षति होगी। वो उसी दिन उसको रुक जाना चाहिए। बनाना क्या चाहिए, ऐसी ऐसी दवाओं का आविष्कार करना चाहिए जिससे कि व्याधियों का नाश हो, दुखों का नाश हो। ऐसा तो हो नहीं रहा है। और हम जबकि जो भी चीजें हैं वो सब खत्म हो जाने वाली है
0: जी।
1: अगर हम टेरिटरी, आज इतिहास गवाह है, सिकंदर ने भी टेरिटरी जीता, सब ने टेरिटरी जीता, किसी के पास आज वो नहीं है। इस सत्य को, इस तथ्य को पूरे दुनिया के शासकों को ध्यान में रखना चाहिए। सभी चीजें नश्वर हैं, क्षण प्रति क्षण परिवर्तनशील है
0: जी।
1: इसीलिए अगर हम इन मुद्दों पे युद्ध की स्थिति लाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, समाज का सम्मान करना चाहिए और देश का सम्मान करना चाहिए। समस्याओं का समाधान बुद्ध दर्शन के अनुसार, बौद्ध अध्ययन के अनुसार अपने आप खत्म हो जाएगा
0: जी। वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत से अवसरों पर कहा है कि ये युद्ध की नहीं बुद्ध की धरती है, ये कहा है। मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब हम कहते हैं कि बौद्ध दर्शन जो है ये भारत से उपजा है और पूरी दुनिया में फैला है, हमने दुनिया को भगवान बुद्ध दिए, उनके दर्शन दिए, तो ऐसे में क्या वजह है कि हम दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वहाँ ये पाते हैं कि व्यवहार में जो बौद्ध दर्शन है उसकी सीख है, लेकिन भारत में कभी कभी हमारा अपना जुड़ाव जो है इनसे नहीं रहा है, क्या वजह आप पाते हैं?
1: देखिए ऐसा नहीं है, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है कि भारत में बौद्ध नहीं।

0: जी,
1: भारत की भूमि कभी भी बौद्ध विहीन नहीं रही है
0: जी।
1: आप जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जाते हैं सिक्किम में, मणिपुर के कुछ हिस्से में, लेह लद्दाख में, वहां की अधिकतम आबादी जो है वो बौद्ध आबादी है। एक तो ये बात
0: जी।
1: इसीलिए अगर ये हम कहते हैं हाँ स्थान परिवर्तन हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है
0: जी,
1: लेकिन खत्म नहीं हुआ है। दूसरी बात कि जब पूरे भारत में बौद्ध दर्शन, बौद्ध विचार लोगों के रक्त में समाया हुआ है
0: जी,
1: जब आप कोई भी अनुष्ठान करते हो तो आप बुद्ध का नाम लेते हो, बुद्ध को स्वीकार करता है, पूजन करता है, यजन करता है, तो इस तरह से देखेंगे तो पूरे भारत के मानस में भगवान बुद्ध समाये हुए हैं
0: जी।
1: और कुछ ज्योग्राफिकल एरिया है जहां बुद्धिज्म प्रत्यक्ष रूप से आदिकाल से आज तक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है, प्रायोगिक नहीं है। हम तो सील का पालन करते हैं, हर भारतीय सील का पालन करता है, हर भारतीय समाधि का अभ्यास करता है, योग का अभ्यास करता है, हर चीज का अभ्यास करता है। हम कैसे मान लें कि बुद्धिज्म यहाँ व्यवहारिक नहीं है? है
0: यानी हमारे व्यवहार में है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो अच्छी बात हम फॉलो करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, बहुत सहज शब्दों में हमें मिली है, वो असल में बौद्ध दर्शन का हिस्सा है,
1: बौद्ध दर्शन का भी हिस्सा है। क्योंकि ये अच्छी बातें, क्योंकि भारत का जो दर्शन है, जो सनातन शब्द है, जो सनातन परंपरा है, न ही बेरेन बेरानी सम्मंतित कुदाचनंग अबेरेन च सम्मंती एस धम्मो सनातनो, बैर से कभी बैर शांत नहीं होता, मित्रता से बैर शांत होता है। अब इसको किसी धर्म विशेष में बांधना उचित नहीं है, भगवान बुद्ध के मुंह से भी यही बात निकला है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये बात भी आती है
0: जी।
1: तो भारत की भूमि ही ऐसी है
0: जी।
1: हमने कभी टेरिटरी नहीं जीता है, हमने तो सिर्फ विचार फैलाया है, शांति फैलाई है, शील फैलाया है, समाधि और प्रज्ञा का विस्तार किया है। इसीलिए हम पर पूरी दुनिया, मानवता का इतिहास ये आरोप नहीं लगा सकती कि मैंने शस्त्र बल से कहीं कुछ भी जीता है
0: जी।
1: तो भारत की भूमि तो ऐसी भूमि है।
0: तो जो नैतिक मूल्य हमें चाहे वो जातक कथाओं से मिले या माता पिता द्वारा सुनाई गई कहानी से मिले या बचपन में हम छोटी छोटी जो पुस्तकें पढ़ते हैं कहानियों की, कथा कहानियों की, उनसे मिले, वो बौद्ध दर्शन की भी बातें करती हैं और हमारे अन्य जो सनातन धर्म से जुड़े हुए अन्य जो दर्शन हैं उनकी भी बातें करती हैं। मैं यहाँ ये बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रखूंगी। आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
1: चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा जाए,
0: बहुत ही प्यारा सा गाना आपको सुनवा रहे हैं।

0: तो गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन की समसामयिकता की। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार जी। तो मैं सतीश जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग जो आप देते हैं उसमें आपने हमें बताया कि बौद्ध दर्शन जो है उससे बहुत सारी चीजें लेते हैं और उन्हें कैसे हम प्रैक्टिकली अपना सकते हैं, अपने व्यवहार में उतार सकते हैं, ये आप सिखाते हैं। तो आपके सेशंस होते हैं अलग अलग जो विभाग हैं उनमें, मैं ये जानना चाहूंगी कि सेशन तो एक दिन का हुआ, दो दिन का हुआ, कैसे आप ये श्योर करते हैं कि जो आपने सिखाया है वो लोगों को समझ में आ गया है और उसके बाद वो व्यवहारिक तौर पर उसे फॉलो भी कर रहे हैं और इसका लाभ मिल रहा है उन सभी को?
1: मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बौद्ध दर्शन को या धर्म के सिद्धांतों को कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। रीजन क्या है, वो बिजनेस वर्ल्ड है। बिजनेस वर्ल्ड में जो हमारी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग शुरू होने से पहले प्री टेस्ट होता है, तो सर्टेन टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद पोस्ट टेस्ट होता है, तो पोस्ट टेस्ट में ये क्लियर हो जाता है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उनके क्या अंक रहे और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद उनके अंक क्या रहे। अगर अंक बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हाँ उन्होंने कुछ सीखा है, और अंक नहीं बढ़ते हैं तो ऐसा माना जाता है कि शायद वो समझ नहीं पाए हैं। तो ये तो एक सिद्धांत हुआ छोटा सा जिससे अंदाजा लगाएगा, परंतु धम्म की जो शिक्षाएं हैं उनको दो दिन में अगर सीख जाए ऐसा संभव नहीं है
0: जी।
1: क्योंकि धम्म के सिद्धांतों को समझने के लिए उसे रेगुलर अभ्यास में लाना अति आवश्यक है। मुख्य

0: रूप से हम कोई भी कार्य अगर करना चाहते हैं तो मानसिक शांति का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जी
0: और मानसिक शांति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हम विचार शून्य ना हो जाएं। और विचार शून्य होने के लिए हमें विपश्यना साधना करनी चाहिए। विपश्यना साधना बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, आनापानासति, सांस का लेना और सांस का छोड़ना और मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करना सांस की आवन जावन के ऊपर। उससे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली मस्तिष्क को स्थिर करने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क है एक ऐसा जंगली घोड़ा है जो बहुत तेज दौड़ता है। अभी हम यहां बैठे हैं, बैठे बैठे वो हमारे घर भी जा सकता है, वो बैठे बैठे वो बाजार में चला जाएगा, वो किसी मित्र से मिलने लगेगा। ऐसे में हमारा जो ध्यान है वो ध्यान नियंत्रित नहीं रह पाता। तो ध्यान को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी काम करें। मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तो मेरी माँ मुझे कहती थी बेटा ध्यान से स्कूल जाना। मम्मी ने कभी भी नहीं कहा कि बेटे ज्ञान से स्कूल जाना। जब स्कूल में हम पेपर दे रहे होते थे एग्जाम के समय, जो टीचर पूरे साल ज्ञान पढ़ाता था वो एग्जाम के समय कहता था बेटे ध्यान से पेपर करना। तो जब मैंने अध्ययन किया धम्म को, तो मुझे पता चला कि ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का गुरु ध्यान है। मैं कुछ कह रहा हूं, अगर आपका मेरी बातों में ध्यान नहीं है तो मैंने क्या कहा आपको समझ नहीं आएगा। हम कोई मूवी देखने गए और मूवी में हमारा ध्यान नहीं है तो मूवी में चल क्या रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसके कौन कौन से कलाकार क्या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैंने अगर ध्यान नहीं दिया तो समझ नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं और माल बेचने की बात होती है, या माल बेचने के बाद किसी समस्या के समाधान की बात होती है, या फिर कस्टमर केयर या कस्टमर सर्विस की बात होती है, या किसी टेक्निकल थिंग की बात होती है, तो ऐसे में व्यक्ति को ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली कि जो है आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और सांस की आवन जावन पे ध्यान लगाएं। ये तो मस्तिष्क को स्थिर करने का एक प्रैक्टिस है, बट रोजाना आपको एक काम कर रहे हैं तो एक काम करते समय उसी में ध्यान लगाने की आवश्यकता है। और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, और ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए फोकस, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेशन, ध्यान लगाने के लिए आपको चाहिए द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, जो चल रहा है उसकी मुझे समझ तो हो।
1: क्योंकि यानी जो बातें हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा मानते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग का हिस्सा मानते हैं कि बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप कुछ करें और सहज भाव से, सजग भाव से करें और शांत भी रहें, चीजों को समझें, है ना, और अपने आप को भी जो है वो जज करते रहें, सेल्फ ग्रूमिंग करते रहें, वो सब जो है इनके बीज आप कह रहे हैं कि वो ध्यान में है और ध्यान जो है वो धम्म से जुड़ा है। तो ये शिक्षाएं जो है आप इस तरह से युवाओं तक पहुंचाते हैं। जी, मैं यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बहुत सारे लोग जो हैं वो, अगर हम बुद्धिस्ट स्टडीज की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, तो इसे रिलीजन स्पेसिफिक मानते हैं। कैसे बौद्ध दर्शन जो है वो धर्म से अलग है?
0: धम्म की जो शिक्षाएं हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी एस धम्मो सनंतनो, ये एक्चुअली धम्म है, धर्म है ही नहीं।
1: जी,
0: जो धम्म है वो धर्म से बड़ी चीज है। धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूर्य दिखे तो दिन है वरना काली रात। तो लोगों को धर्म ऐसा लगता है कि पूजा पद्धति धर्म है।
1: जी,
0: लोगों को लगता है परंपराएं निभाना, रूढ़िवादिताओं को निभाना, संस्कारों को निभाना, परंपराओं को निभाना, उन्हें लगता है वो धर्म है। असल में धर्म बिल्कुल अलग चीज है।
1: जी,
0: जिस तरह से अग्नि जलाने का काम करती है, पानी शीतलता देने का काम करता है, तो पानी का धर्म है शीतलता देना।
1: जी,
0: अग्नि का धर्म है वो गर्माहट देती है। ठीक उसी तरह से जो मनुष्य का धर्म है वो है करुणा, मैत्री, बंधुत्ता, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में मानवता परिलक्षित होनी चाहिए। जब मनुष्य के मस्तिष्क की वो पराकाष्ठा उत्पन्न होने लगे जहां मनुष्य केवल मनुष्य प्रतीत होता है, जहां लिंग भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां जाति भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां भाषा भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां क्षेत्रवाद समाप्त हो जाता है, जहां रंग भेद समाप्त हो जाता है, जहां विभिन्न प्रकार की व्याधियां स्लोली एंड ग्रेजुअली समाप्त हो करके मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराती है, तो उस समय हम धम्म की गंभीरता को आचरण में धारण करने का कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन मनुष्य होने के बाद मुझे एक मनुष्य छोटा प्रतीत होने लगता है, तो वहां मिलावट आ जाती है, वो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, वहां पर उसकी मानसिक अवस्थाएं विकृत हो जाती है, विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां समाज में उपलब्ध हो रही हैं, बढ़ रही हैं।

0: हैं या बढ़ाई जा रही हैं, उनका समापन ही धम्म की तरफ हमें लेकर के जाता है।
1: जी, तो समसामयिकता उसकी ये है कि जो सामाजिक कुरीतियां उस वक्त थी उनको दूर करने के लिए धम्म जो है वो शुरू हुआ, और आज भी जो सामाजिक कुरीतियां हम अपने आसपास देखते हैं उनका निवारण हम इस दर्शन में पाते हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। यहाँ मैं आपकी पसंद का एक और गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ।
0: इकबाल फिल्म का एक गाना है आशाएं।
1: जी, ये आपको पसंद है गाना?
0: जी,
1: बहुत ही अच्छा सा गाना है, एकदम से मूड जो है वो बहुत अच्छा कर देता है। तो हमारे सभी श्रोताओं को हम ये गाना सुनवा रहे हैं।

0: प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम और सतीश कुमार हमारे विशेषज्ञ हैं और हम अपने विशेषज्ञों से ये जान रहे हैं, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं आज, इनसे हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह से बौद्ध दर्शन जो है वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बना रह सकता है और कैसे हम अपने रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उनका समाधान बौद्ध दर्शन से भी निकाल सकते हैं और वो समाधान हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अब राणा पुरुषोत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की तो एक शब्द बार बार हमें सुनाई देता है, हम पढ़ते हैं मध्यम मार्ग। आज का जो युग है, एक तो इस पर बहुत ज्यादा दबाव हम महसूस करते हैं अपने आप को हर पल साबित करने का, ये टेक्नोलॉजी जो है वो हर समय हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहती है, पीयर प्रेशर एक महसूस होता है, ग्लोबल विलेज में हम जी रहे हैं, हम AI जो है अब जीवन का हिस्सा बन गया है, तो जहाँ कृत्रिम बौद्धिकता जो है उस पर हमारी डिपेंडेंसी हो रही है, वो हमारे जीवन को कहें कि कंट्रोल करती जा रही है, वहां पर मध्यम मार्ग जो है उसे हम कैसे अपना सकते हैं और इसका क्या लाभ हमें होगा?
1: देखिए, मध्यम मार्ग जो है वो एक तरह से बौद्ध दर्शन का मेरुदंड है।
0: जी,
1: भगवान बुद्ध ने अपनी ही वाणी में कहा था कि मझिमा पट्टी पटी पदाति चक्षु करनी यान करनी, ये जो मध्यम मार्ग है यह आंख देने वाला है, आई ऑफ विजडम देने वाला है और ये हमें नॉलेज देने वाला है। क्योंकि द्वे अंते भिक्खवे पब्बजितेन न सेवितब्बा यो चायं कामे सुकाम सुखल्लिकानु योगो हीनो गम्मो पुथुज्जनिको अनरियो अनर्थ संगितो, यह हमें दो अंतों को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो मध्यम मार्ग, अब जैसे देखिए आपकी चर्चा में परिचर्चा में कॉरपोरेट शब्द बार बार आ रहा
0: जी।
1: है, मध्यम मार्ग में एक सोपान है सम्मा आजीवो राइट लाइवलीहुड, इसमें बताया गया है कि किस तरह की आजीविका हमें स्वीकार करनी चाहिए, किस तरह के आजीविका पे हमें जीवन जीना चाहिए
0: जी।
1: और यही सारी चीजें आगे बढ़ते हुए सुमाकर की एक किताब आई थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें उन्होंने बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स शब्द को क्वाइन किया था
0: जी।
1: और आज ये जो है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एक अल्टरनेटिव सिस्टम बन चुका है पूरे विश्व में और दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में इसकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा भी शुरू हो गई है। अगर इसी मध्यम मार्ग को हम उठाएं मेडिकल साइंस के फील्ड में ले चलते हैं तो वहां भी जो माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं उसकी वहां पे बहुत प्रासंगिकता बढ़ गई है
0: जी।
1: अभी 7 टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं जो काउंसलिंग एंड साइकोथेरापी के टेक्निक्स हैं, जो पूरी तरह बौद्ध दर्शन पे आधारित है, माइंडफुलनेस पे आधारित है, जो मेडिकल साइंस की बात है
0: जी।
1: शिक्षा में हम अपने मेंटल कैपेसिटी को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे मजबूत करें, जिससे कि हमारा जो एक ह्यूमन कैपेसिटी है वो विकसित होकर सामने आए
0: जी।
1: रही बात जो मैकेनाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया का, हम जो मशीनों पे आश्रित हो रहे हैं, तो देखिए मशीन को चलाएगा कौन? मशीन को मनुष्य चलाएगा, मनुष्य को उसका मन उसको गाइड करता है। चूंकि आपने धम्मपद में देखा होगा मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, अब AI कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, हम AI के माध्यम से हर चीज को देखें समझें, लेकिन उसके जड़ में नैतिकता शब्द का होना बहुत जरूरी है। हम किसी भी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे हमें नैतिक होना बहुत आवश्यक है
0: जी।
1: और नैतिक सील समाधि और प्रज्ञा, हमें सील का पालन करते हुए समाधि पे चलते हुए प्रज्ञा हमारे अंदर उत्पन्न होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम वायरस पे बायोटेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और हमें हमारे अंदर सील की भावना है, हम सील का विकास कर रहे हैं, सील का अभ्यास कर रहे हैं, हम कभी ऐसा वायरस नहीं बनाएंगे जिससे कि कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी
0: जी।
1: हमें उन चीजों का आविष्कार करना है जो मानव के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, देश और राष्ट्र के लिए जो उपयोगी हो
0: जी।
1: हम मस्तिष्क और मशीन का इस्तेमाल दवाओं के लिए करेंगे, मनुष्य के मनुष्यता के विकास के लिए करेंगे, न कि ध्वंस के लिए करेंगे
0: जी।
1: तो यहाँ पे बुद्ध की वाणी, बुद्ध का दर्शन समीचीन है कि मनुष्य का मशीन का इस्तेमाल मनुष्य नैतिकता के साथ करे और अपने आप को नियंत्रित रखे और इस सिद्धांत को रखे, सदैव सामने रखे, सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनंग एतान बुद्धान शासनंग, इसको ध्यान में रखे, कोई पाप न होने पाए, चित्त परिशु

0: हो जाए, कुशल वृत्तियों का विकास हो और हम जीवन में आगे बढ़ते रहें, पूरे मानवता की शांति होगी, विश्व शांति होगी
1: जी। यानी बौद्ध दर्शन में जो है वो इस तरह की बातें हैं कि व्यवहारिक तौर पर हम अपना सकते हैं और ये हमें कहीं आगे बढ़ने से नहीं रोकती। हम आधुनिकता शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं तो हम लगातार आधुनिक हो सकते हैं, अपने आसपास की चीजों से, समसामयिक समाज से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन साथ साथ ये दर्शन हमें हमारे अंदर एक तरह का नैतिक मूल्य जो है वो हमेशा रखेगा, जो हम काम करेंगे वो सही दिशा में जाएगा।
0: बिल्कुल
1: जी। मैं यहाँ आपसे वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं उनकी बात करना चाहूंगी। पर्यावरण हमारे सामने एक चुनौती है। हम लगातार बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, हम बात करते हैं कि परिवार जो हैं वो अब धीरे धीरे एकल परिवार होते जा रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, और रोजगार एक समस्या है युवाओं के सामने। और अगर है भी रोजगार उनके पास, तब कहीं ना कहीं वो आत्मसंतुष्टि जो है वो भाव कम होता जा रहा है, प्रतिस्पर्धा है, एक भाव मन में हमेशा रहता है असंतुष्टि। और ऐसा माना गया है कि आप असंतुष्ट होंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपको प्रयास के लिए प्रेरित करेगी असंतुष्टि आपकी। बौद्ध दर्शन इन सब के बीच कैसे हमें संतुलित रहना सिखाता है?
0: यहाँ भी आपने कई बिंदुओं पे एक साथ प्रकाश डाला है
1: जी।
0: सबसे पहले आपने पर्यावरण के ऊपर प्रश्न किया है, दूसरा प्रश्न है आपका परिवार टूट रहा है
1: जी,
0: तीसरा प्रश्न है बेरोजगारी और संतुष्टि। पर्यावरण को लेके बौद्ध दर्शन में एक नई विधा की शुरुआत हो गई है 90 के दशक के बाद या 90 के दशक के आसपास, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। हमें पर्यावरण को कैसे बचाना है? जब हम तृष्णा का त्याग कर देंगे
1: जी,
0: अगर थोड़े से प्रकृति के दोहन से हमारा काम चल जाता है, लेकिन हम तृष्णा के कारण जो है प्रकृति का दोहन असीमित रूप से करते हैं
1: जी।
0: यहाँ पे बौद्ध दर्शन में वृक्ष को कैसे बचाना है, जल की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, वायु की शुद्धता को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें मिलती हैं और ये सब मिलकर के एक नए विषय का जन्म देता है, उसको कहते हैं बुद्धिस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसमें जो बौद्ध साहित्य है उसमें स्थान स्थान पर इस बात पे प्रकाश डाला गया है कि कौन व्यक्ति नीच है, जो बीज को नष्ट करता है, जो पौधे को नष्ट करता है, जो वृक्ष को नष्ट करता है, उसी को हम नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण के लिए बुद्धिज्म में, और इसका परिणाम है कि आज थाईलैंड में भिक्षु जो है वो जब पेड़ कटने जाते थे तो भिक्षु उनको पकड़ लेते थे, या पेड़ को चीवर पहना के उसको भिक्षु का स्वरूप दे देते थे जिससे पेड़ कटना बंद हो जाता था। उसी तरह की चीज हमारे यहाँ सुंदरलाल बहुगुणा करते थे, चिपको आंदोलन, वो जाके पेड़ से चिपक जाते थे
1: जी।
0: ये हमारे रक्त में बसा हुआ है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, और बौद्ध दर्शन और बौद्ध सिद्धांत तो इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे भारत हो। दूसरा प्रश्न आपने किया था कि परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि हम स्वार्थी होते जा रहे हैं
1: जी,
0: स्व के लिए जीना पसंद करते हैं, हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने समाज को नहीं देख पाते हैं। अगर हम सबको एक साथ देखना शुरू करें, समेकित रूप से देखना शुरू करें, तो परिवार टूटने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सबकी भूमिका इस समाज में, इस परिवार में निर्धारित है। हम अपनी भूमिका के तहत चलें, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। हम एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे को समझ के जिए, एक दूसरे को समझने के लिए जिए, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा, समाज कभी नहीं टूटेगा। और तीसरी बात आपने कहा बेरोजगारी और असंतुष्टि। संतुष्टि परमंग धनंग की बात बुद्धिज्म में कही गई है। सबसे पहले बुद्धिज्म में एक चीज बौद्ध दर्शन में बताया गया है कि सभी चीजें नष्ट हो जाने वाली है, क्षण क्षण परिवर्तित होने वाली चीजें हैं। तो जो चीजें नष्ट होने वाली है उससे मोह क्या नहीं। रही बात बेरोजगारी की, तो हम जब अपनी आवश्यकताओं को न्यून कर लेंगे तो हमें बहुत अधिक की आवश्यकता नहीं होगी, हम अपना एक आदर्श जीवन जी पाएंगे और यहाँ पे हमें तृष्णा से मुक्ति मिलेगी, हम तृष्णा से दूर हो जाएंगे, हमारा समाज भी एक उज्जवल, एक उत्कृष्ट समाज में परिवर्तित हो जाएगा, परिवार परिवर्तित हो जाएगा और व्यक्ति परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार जो है बौद्ध दर्शन पर्यावरण से लेकर के सामाजिक प्रदूषण से लेके और व्यक्तिगत प्रदूषण हर स्तर पे

0: हमें पूरी तरह से नियंत्रित करने की, नियंत्रित रखने की बात करता है
1: जी। और जो ये कहा जाता है कि हम असंतुष्ट रहेंगे वो प्रेरणा बनेगी आगे बढ़ने के लिए, इस बात को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, असंतुष्ट रहेंगे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और इस कारण से हम अब खुद को दबाव में रखेंगे
1: जी,
0: हर समय दबाव में रखेंगे कि जो मिला नहीं उससे ज्यादा मिलना चाहिए। हम अपने बच्चों को दबाव में रखेंगे कि तुम जितना पढ़ रहे हो उससे काम नहीं चलेगा, और अधिक पढ़ो
1: जी।
0: बच्चों को दबाव में रखेंगे, समाज को दबाव में रखेंगे। जब आप असंतुष्ट हैं, आपसे जुड़ा हुआ समाज भी असंतुष्ट होगा, परिवार भी असंतुष्ट होगा। इसीलिए ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, इस पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें संतुष्ट होकर जीवन जीना चाहिए। लेकिन अब आप कहती हैं कि असंतुष्टि जो है वो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, नहीं, भारत में एक एक क्षण के इस्तेमाल की बात की जाती है, और जब हम उपलब्ध एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं तो हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके लिए संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट होने की जरूरत है और एक एक क्षण का सही अर्थ में सदुपयोग करने की जरूरत है।
1: संतुष्ट होकर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, और जैसा कि सतीश जी ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट करते वक्त हमें पूरी तरह वहां पर उपस्थित रहना है, सतर्क होकर और ध्यान से काम करना है।
0: बिल्कुल
1: जी। तो कौन सा गाना आप सुनवाना चाहते हैं श्रोताओं को?
0: हमको मन की शक्ति दे, मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद की जय करे।
1: जी, गुड्डी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, और सच में ये हमारे मन को जो है वो बहुत ही बलशाली बना देता है। ये गाना सुनकर ही अंदर जो है वो भाव इस तरह का पैदा होता है। आपको सुना रही हैं गुड्डी फिल्म का गीत।

0: इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ पे, जो कि हमने बचपन से सुना है और हमारे स्कूलों में जो है ये प्रार्थना भी होती रही है, तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत कर रही हूँ पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। चलते चलते सतीश जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जब हम बौद्ध दर्शन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कोई भी परिस्थिति है ही नहीं जिसकी बौद्ध दर्शन बात ना करता हो। हम चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, या हम व्यक्तिगत स्वभाव की बात करें, और या फिर हम आध्यात्मिक उत्थान की बात करें, अपदीपो भव वाला भाव भी हमें सिखाता है बौद्ध दर्शन। मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हम बुद्धिज्म को, बौद्धिक जो स्टडीज हैं, इन सब को धर्म से अलग देख लेते हैं, मान लेते हैं, उसके बाद अगर हमारे युवा साथी कुछ पढ़ना चाहें, इस तरह के कोई मोटिवेशनल जो क्लासेस होती हैं, सेशंस होते हैं, वो करना चाहें, तो कैसी अप्रोच उन्हें करनी चाहिए, कहाँ से वो ये सब पढ़ें जाने?
1: सबसे पहले तो मैं यहाँ ये सजेशन देना चाहूंगा कि विपश्यना साधना के सेंटर्स पूरे भारत में हैं
0: जी,
1: जो आपको रीचेबल हो, वहाँ 10 दिन का कोर्स होता है एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन वहाँ स्टे भी फ्री होता है और खाना पीना भी फ्री होता है, उसके लिए देयर इज नो चार्ज। तो विपश्यना साधना में जाएं, वहां जाकर हमें धम्म के मूल सिद्धांत समझ में आते हैं, क्योंकि जो धम्म है, धम्म अनुभव करने की चीज है, अभ्यास करने की चीज है। तो एक तो यहां से कर सकते हैं, दूसरा हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक रूप से कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रतिपादित कई बुक्स हैं, उनमें एक है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, उस पुस्तक में धम्म को लेकर के बहुत अच्छी जानकारियां उपलब्ध है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये कामना करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं और हमारे जेन ज़ी जो श्रोता हैं, वो बहुत सारी जानकारी रखते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम समय में वो अपने आप को बहुत ज्यादा परिपक्व करने की प्यास में लगे होते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जैसे वो समय का सदुपयोग करते हैं, उसी सदुपयोग के माध्यम में वो ये पुस्तकें भी पढ़ेंगे, किसी ना किसी माध्यम से उन्हें प्राप्त हो ही जाएंगी। और हमें बताया राणा पुरुषोत्तम जी ने कि किस तरह से हम अपने व्यवहार में बौद्ध दर्शन जो है उसे शामिल कर सकते हैं, और जीवन की उस तरह की कोई समस्या है नहीं जिसका समाधान हमें बौद्ध दर्शन से न प्राप्त हो, बस हमें स्वयं पर काम करने की आवश्यकता है। और हमें सतीश कुमार जी ने बताया कि ये 2 दिन में या किसी एक सेशन से नहीं होगा, निरंतरता इसमें जरूरी है। लगातार जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हम अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति बना पाएंगे, और बेहतर व्यक्ति से बेहतर समाज बनेगा, और बेहतर समाज से हमारा राष्ट्र और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये मूल्य जो है वो जाते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप दोनों ने हमें बौद्ध दर्शन जो है उसे समझाया है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे श्रोता जो हैं इसके बारे में जो भी जाना है उसे अपनाएं और उनका लाभ हो। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ। प्रोफेसर राणा पुरुषोत्तम, बौद्ध अध्ययन विभाग, नव नालंदा महाविहार, संस्कृति मंत्रालय, नालंदा से आप जुड़े हैं, और लगातार जो है वो बौद्ध दर्शन आपके माध्यम से प्रसार भी पाता है, और आज हमारे स्टूडियो में भी आप आए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार जी आपका, कॉरपोरेट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका है, और आपके माध्यम से हमारे युवा साथी जो हैं वो बौद्ध दर्शन को समझ पाते हैं और प्रयास कर पाते हैं उसे अपने व्यवहार में उतारने का। आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत साधुवाद।
0: तो श्रोताओं, आज हमने पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में बौद्ध दर्शन की समसामयिकता समझी। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

लबो पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, महकदे एहसासां प्यार भरे जज्बातां अते दिल नूं छू जाण वालियां शायरियां दे नाल तुहाडा स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम जिसका नाम है दिल आज शायर है। ते मैं हाँ जी तुहाडी दोस्त आरजे सुरभी। दोस्तों अज का ये शाम ना बहुत खास है, ये दिन बहुत खास है, क्योंकि अज का ये पूरा प्रोग्राम असी समर्पित करना है उस प्यार नू जिसका कोई मोल नहीं है, उस रिश्ते नू जो बिना किसी शर्त दे सानू प्यार करता है। शुरुआत विच मैं शायरी पढ़ी, तुसीं समझ तां गए होणे हो क्योंकि अज बड़ा खास दिन है जो हर कोई मना रहा है, वो है मदर्स डे। जी हाँ दोस्तों, अज मदर्स डे स्पेशल विच हर शायरी, हर एहसास, हर लफ्ज सिर्फ माँ दे नाम होवेगा। तो उम्मीद करती हाँ कि तुसीं भी मैनू माँ दे नाल जुड़ियां हुई शायरी भेजोगे। सो दोस्तों, साढ़े बहुत सारे रिश्ते होंदे ने, है ना, माँ होंदी है, बाप होंदे है, पर जो माँ दा रिश्ता ना वह सब तो ज़्यादा अनमोल रिश्ता है। उस तो वधिया रिश्ता शायद ही दुनिया विच कोई नहीं होएगा। एक माँ ही तो है जो साढ़े हर एक गल नू समझती है, साढ़े इमोशंस नू समझती है, तो साढ़े नाल हमेशा खड़ी रहती है। माँ तो वड्डा तोहफा जिंदगी च तुहानू होर की ही मिलेगा। इस करके एक खास जिहड़ा दिन है ना, असी माँ नू डेडिकेट करना है, और इस दे नाल असी प्यारी प्यारियां गज़लां प्ले करनी है। गज़ल दे नाल नाल असी गल करनी है माँ दी, वह भी किस तरीके नाल अपनी शायरी दे रूप दे नाल, ठीक है ना। समझ गए होवोगे तुसी सारे, क्योंकि इस शायरी दे विच असी वो जज्बात शामिल कर रहे हैं जो साड़ी माँ नाल जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करनी है कि अज्ज दे प्रोग्राम विच साड़ी माँ नू कोई भी गल बुरी ना लगे, असी हमेशा अच्छी शायरी पेश करिए। सो अपने इमोशंस नू पेश करन दा वक्त आ चुका है, तुसी भी अपनी दिल दी गल जो तुहाडी माँ नाल जुड़ी हुई है मैनू अपनी शायरी दे रूप दे विच भेजो। साडा वट्सअप नंबर है जी 9855101027 9855101027। तुहाडी आर जे तो सुरभी तुहाडा इंतज़ार कर रही है, और इसी इंतज़ार दे विच एक ट्रैक मैं प्ले करन जा रही हाँ। इस ट्रैक तो बाद आउंदी हाँ जी, देखती हाँ अज किन्ने सारे लिसनर्स अपनी माँ नू कोई शायरी डेडिकेट करते हैं।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के नए अंक के साथ आपकी दोस्त शारणी मित्तल स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, मौखिक स्वास्थ्य केवल हमारे दांतों और मसूड़ों की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का एक अभिन्न हिस्सा है। एक स्वस्थ मुख न केवल हमें सुंदर मुस्कान प्रदान करता है, बल्कि ये हमारे आत्मविश्वास

0: श्वास और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। आप सभी जानते हैं कि मौखिक रोग जैसे कि दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी आजकल बहुत सामान्य हो गए हैं। आज हमने सोचा कि अपने इस कार्यक्रम में आपको जानकारी दें मौखिक स्वास्थ्य पर। आज हमारा विषय है ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ, यानी मौखिक स्वास्थ्य से संपूर्ण स्वास्थ्य। और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा। आप फॉर्मर डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल रहे हैं मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस में और अभी आप वाइस चांसलर हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार डॉक्टर महेश वर्मा आपका स्टूडियो में।
1: नमस्कार शाली जी, नमस्कार।
0: सर आपने समय निकाला है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि ओरल हेल्थ पे हम बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो दांतों की होती है, मसूड़ों की होती है, पूरे मुख की होती है, उस पर हम अलग अलग कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में करते आए हैं। पर आज क्योंकि आप यहाँ हैं, इतनी वास्ट नॉलेज आपके पास है, आप जानकारी रखते हैं, हम चाहेंगे कि संपूर्ण तौर पर हम डिस्कस करें ओरल हेल्थ को। और कई बार हम ये समझ भी नहीं पाते हैं कि हमारा जो मौखिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है तो शरीर के विभिन्न अंगों को भी वो कहीं ना कहीं विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। तो ये जानकारी भी आज आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचे तो अच्छा रहेगा। आपका थोड़ा समय इंट्रोडक्शन अपने श्रोताओं को देना चाहूंगी कि आप पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं, भारत सरकार द्वारा बीसी रॉय अवार्ड आपको मिल चुका है, साथ ही साथ नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड आपको मिल चुका है और हाईएस्ट अवार्ड हिमाचल प्रदेश प्रेरणा स्रोत आप रिसीव कर चुके हैं और दिल्ली स्टेट का भी हाईएस्ट अवार्ड ले चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर की इतनी जानकारी हमारे साथ हमारे श्रोताओं तक आज पहुंचेगी, इसके लिए आप यहाँ आए हैं और हमारे कार्यक्रम का भाग बन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद शालिनी जी।
0: तो सर सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आप इस टॉपिक पे थोड़ा सा बोलें कि ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ, व्हाई इज ओरल हेल्थ सो इम्पोर्टेंट।
1: देखिए आज सुंदर दिखना तो सभी को अच्छा लगता है, बट उसके पीछे जो सुंदर मुस्कान है उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि सुंदर दांत और मसूड़े और दिल जो है वो इकट्ठे धड़कते हैं, उनका चोली दामन का दार साथ है।
0: खूबसूरत सी बात है
1: कि देखिए हम हमारा जो मुख है वो वास्तव में जो हमारा समग्र जो स्वास्थ्य है उसका एक दर्पण है और उसका एक मिरर है या गेटवे है। देखिए हम कोई भी जैसे कोई भी सामान लेते हैं तो हम उसमें थोड़ी सी बानगी निकालते हैं, तो हमारा जो माउथ है ये हमारे शरीर की बानगी है क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, इसका निरीक्षण कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हमारे मसूड़े फूले हुए हैं या मसूड़ों में सूजन है तो इसका मतलब ये भी है कि हमारे शरीर में सूजन है। तो इसका जो अभिप्राय है, जो एक समग्र स्वस्थ मुख का जो अभिप्राय, वो बहुत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, उसका जो कनेक्ट है वो डीपली कनेक्टेड है हमारी बॉडीली हेल्थ से, हमारे सिस्टमिक हेल्थ से। और मैं तो ये कहूंगा कि स्वस्थ मुख का अर्थ है स्वस्थ शरीर, बेहतर पाचन, स्पष्ट वाणी और आत्मविश्वास से भरा हुआ जीवन। तो देखिए कि कितना ये जो है कितना डीप सीटेड है,
0: डीप है,
1: you know, और हम जो अक्सर क्योंकि होता क्या है कि जो मुख की बीमारियां हैं हम उसे बहुत महज टाल मटोल करके इधर उधर कर देते हैं, पर आप देखिए कि इसका कितना गहरा शरीर से कनेक्ट है और अगर हम इस पे ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है, बहुत सारी चीजें जो है वो मुख से ही शुरू होती हैं और वहीं के जो कीटाणु जीवाणु बैक्टीरियाज वो जो खून में चले जाते हैं, वो प्रवेश करते हैं और फिर वो जो कीटाणु जो यू नो पूरे शरीर में हलचल पैदा करते हैं
0: जिससे बीमारियां होती हैं,
1: जिससे बीमारी होती है। आप देखिए कोई आज हम एंटीबायोटिक्स देते हैं या दवाई देते हैं तो क्या करते हैं, हम बैक्टीरियाज को की रोकथाम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर बैक्टीरियाज को हम छोड़ देते हैं और उसको हम अपने ब्लड स्ट्रीम में मसूड़े अगर फूले हुए हैं वहां से माउथ में मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो बस ताक में बैठे हैं कि मैं कैसे ब्लड के द्वारा दूसरे ऑर्गन में जाऊं, वहां अपने आप को साबित करूं और फिर अपना अपना असर दिखाऊं। तो ये अगर हम इससे इसको हम रोक सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप नहीं सोचते कि

0: शरीर की कितनी और बीमारियों से हम वंचित हो सकते
1: जी
0: हैं
1: बिल्कुल
0: या
1: बिल्कुल
0: उनसे उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, प्रिवेंशन। ये
1: प्रिवेंशन
0: मैं तो ये कहूंगा कि ओरल हेल्थ मेंटेनेंस जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर है आपकी बॉडीली हेल्थ को ठीक रखने में।
1: तो चलिए, ये टॉपिक डॉक्टर साहब ने विस्तार से समझा दिया कि आज हमने जो लिया है उसकी कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्योंकि आपने कहा कि ओवरऑल हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ओरल हेल्थ। और जब हम दांतों की बात करते हैं, चेहरे की बात करते हैं, एक खूबसूरत मुस्कान की बात करते हैं, बिल्कुल अच्छी बात आपने बहुत खूबसूरत बात बोली थी, डायरेक्टली वो रिलेटेड है हमारे हार्ट से। अगर हम खुश होते हैं तो अपने आप ही वो जो स्माइल और एक होती है वो एक अच्छी सी निकलती है, और
0: जी
1: अगर हम सिर्फ शो कर रहे होते हैं तो वो एक अलग ही होती है, वो इम्प्रेस भी नहीं कर पाती है। तो हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि आज हम इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे रेडियो डॉक्टर मौजूद हैं, 4 बजे तक रहेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आते हैं। आप हैं रेडियो डॉक्टर।

0: बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत हमने सुना और खास तौर पर डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत था, तो क्यों पसंद है इतना आपको?
1: नहीं, इस गाने में बहुत कुछ छुपा है।
0: अच्छा,
1: तो कहना है, कहना है तुम ही तो लाई हो जीवन में प्यार। मैं तो ये कहूंगा

0: कि ओरल हेल्थ के प्रति कुछ कहना है, कुछ कुछ मुख स्वास्थ्य के प्रति कहना है। अगर आप मुख स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तो जीवन में प्यार ही प्यार है। फिर कितना गहरा रिलेशन है। और इसमें एक और चीज आती है कि आज बस करना है इकरार, तो आज हमें एक वादा करना है, एक रिजॉल्व लेना है, एक इकरार करना है कि हम आज के बाद अपने मुख के प्रति ज्यादा सजग रहेंगे, ज्यादा हम इसके बारे में ध्यान देंगे। और जो एक ढुलमुल रवैया है हमारा अपने स्वास्थ्य के प्रति इन जनरल एंड ओरल हेल्थ के प्रति इन पर्टिकुलर, उसके बारे में इकरार करना है। और ये हमने एक इसके बारे में एक हमें डिसीजन लेना है।
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कार्यक्रम के अंत तक, जब हमारा कार्यक्रम खत्म होगा 4 बजे तक, तो हमारे सारे श्रोता आपके साथ साथ जो आप कह रहे हैं उस चीज को मानेंगे और हमें फीडबैक में हमें बताएंगे, हमारे मेल पर लिखेंगे और बताएंगे कि आप उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। हमारे एक कॉलर है जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, हेलो।
2: पहले तो शर्ली मैम को नमस्कार।
1: जी जी, नमस्कार राजेंद्र जी।
2: हाँ, और डॉक्टर साहब को भी सही दिल से नमस्कार और आभार।
1: जी बताएं। हाँ, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से आपको?
2: हाँ, तो मेरे 3-4 छोटे छोटे सवाल है। हाँ, पहला सवाल मेरा यह किसी किसी शख्स को यदि टॉन्सिल है, थायराइड है या फिर जो है सर्वाइकल है स्पोंडिलोसिस, तो क्या इसका भी मसूड़ों पे और दांतों पे और टंग पे जीभ पे असर पड़ता है, पड़ सकता है? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल कि जब बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं जब वो गिर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या एहतियात बरती जाए कि जब नए दांत आते हैं वो टेढ़े मेढ़े ना हो?
1: ओके।
2: मेरा ये है
1: जी।
2: तीसरा सवाल, खाते पीते हैं कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होती रहती है दांतों की, पर क्या इसके इसके अतिरिक्त भी कोई दांतों की और मसूड़ों की और जीभ की एक्सरसाइज हो सकती है? सब पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं।
1: ठीक।
2: और चौथा आखिरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी तरीके समझा रहे हैं बहुत बढ़िया है। तो सर को मतलब अगर दुखी करना हो या हमारी क्लास ले तो उसके क्या उपाय है? बड़ी मेहरबानी होगी।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछे।
0: हाँ, हाँ,
1: तो बताएं सर।
0: देखिए, पहले तो इनका सवाल था कि टॉन्सिल है या थायराइड है, अगर इस तरह की कोई कोई शारीरिक बीमारी है या कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है तो उसका क्या दांतों पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। क्योंकि बहुत सारी जो इस तरह की बीमारी है जैसे डायबिटीज है वो भी एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, यू नो, तो उसका जो असर मसूड़ों पे या और माउथ के दूसरे जो पार्ट्स हैं उस पे पड़ सकता है। तो ये दोनों ओर से है। मसूड़ों की वजह से भी कुछ खामियां हो सकती हैं शरीर में, और अगर कोई शारीरिक बीमारी है उसका भी असर पड़ सकता है। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो एक सब चीज कंपोजिट है, हम इसको सेपरेट नहीं करते, माउथ को बॉडी से सेपरेट नहीं कर सकते।
1: जी, जी।
0: दूसरा, इनका दूध के दांत जब टूटते हैं और नए ना टेढ़े मेढ़े आए तो सबसे पहले ये जरूरी है कि वो समय पे टूटने चाहिए, ना पहले टूटने चाहिए ना बाद में टूटने चाहिए। पहले टूटेंगे तो जो जगह बना के रखी है दूध के दांतों ने बनाई है परमानेंट के लिए वो टेढ़े मेढ़े आएंगे, और अगर हम बड़ी देर तक रखेंगे उनको, कई बार क्या होता है कि वो टूटते नहीं है तो कई बार डॉक्टर के पास जाके हमें निकलवाने पड़ते हैं, अगर वो नहीं करते तो भी दांत टेढ़े मेढ़े आ
1: सकते। तो सही उम्र क्या होनी चाहिए थोड़ा?
0: नहीं, हर दांत का अलग अलग है।
1: ओके।
0: है ना, हर दांत का अलग अलग है। दूध के दांत, हमारे पहला दूध का दांत 7 महीने में आता है, 6 से 7 महीने में, और 2 से 2.5 साल तक दूध के दांत सारे आ जाते हैं। परमानेंट दांत जो है वो 6 साल से आना शुरू होते हैं, 6 साल 7 साल, और वो 11-12 साल की उम्र में कुछ दूध के दांत होते हैं कुछ पक्के दांत होते हैं। तो अब ये सोचिए कि 6 महीने से लेके और 12 साल तक कुछ पक्के दांत है कुछ दूध के दांत है। इसमें भी कई बार पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि वो पक्का दांत खराब होता है और वो सोचते हैं ये दूध का दांत है।
1: अच्छा।
0: और कई बार वो कहते हैं चलो गलने दो ये तो
1: नया।
0: उनको ये मालूम नहीं है कि 6 साल की उम्र में पक्का दांत आ चुका है और वो पीछे का दांत है, सामने का नहीं है। सामने का दांत 7 साल में आएगा, तो पीछे के दांत को ये भ्रम में रहते हैं कि ये तो दूध का दांत है। तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट दांत है वो कई बार हम खो देते। तो ये सब चीजें जो है इसकी जानकारी आपको आपके डॉक्टर देंगे। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे, उनको कंसल्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको गाइड करेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हम अपने आप डिसीजन ना लें, हम डॉक्टर के पास जाए, और डॉक्टर के पास सिर्फ बीमारी में ना जाए, हम चेकअप के लिए भी जा सकते हैं, प्रिवेंटिव अप्रोच भी हो सकती है, ताकि जो चीज है उस बीमारी को रोकथाम

0: कर पाए हम और उसको बढ़ने ना दें।
1: तो डॉक्टर साहब, पहली विजिट कितने एज में होनी चाहिए बच्चे की, अगर हम पहली विजिट की बात करते?
0: देखिए, ऐसा है कि पहली विजिट तो जैसे ही बच्चे के दूध के दांत आना शुरू हो
1: तभी हो।
0: बच्चे के दूध के दांत 6 से 7 महीने में आना शुरू करते हैं, और जब आना शुरू करें वो कंसल्ट कर सकते, क्योंकि दूध के दांत का भी सफाई बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बच्चे जो है दूध के दांत के जब होते हैं तो दूध ज्यादा दूध पीते हैं, और दूध जो है उसमें मीठा है, अपना भी मीठा है और हम दूध को और मीठा करते हैं, और जब दूध भी और मीठा भी एक बैक्टीरिया के लिए बहुत ही आइडियल मीडियम है ग्रो करने के लिए, जब हमने दूध पिला दिया और उसमें मीठा भी है और
1: फिर सोते सोते भी पिला,
0: सोते पिला दिया तो क्या हुआ, माउथ में तो लाखों बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं और वो ताक में रहते हैं कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं झपटा मारूं, तो वो फिर बढ़ने लगते हैं और उससे जो है, तो बचपन में भी कीड़ा लग सकता है। अच्छा। बचपन में भी
1: मतलब बीमारी की शुरुआत वहीं से हो सकती है।
0: और जब थोड़े से और दांत आने शुरू करते हैं तो मुसूड़ों की बीमारी भी शुरू हो सकती है, जिंजिवाइटिस हो सकती है। तो ये हम इसको सोचे कि नहीं अभी तो दूध के दांत, अभी कुछ नहीं होगा, पक्के दांत होंगे तब हम करेंगे, तो ऐसा नहीं है,
1: ये अप्रोच गलत है।
0: हाँ, बीमारी वहीं से स्थापित हो गई है और वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और फिर बाद में जाके बहुत अपना असर करेगी।
1: तो शुरू से ही अलर्ट रहना है। हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत अलर्ट हैं, तभी वो हम आपसे कुछ कुछ पूछना चाह रहे हैं। लाइन पर हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: मैम, नमस्ते, मैं निगल बोल रहा हूँ प्रयागराज से।
1: जी जी, हाँ बताइए।
2: मैम, मेरी मैडम है मिसेज, मैम उनके जो दांत हैं, दांत के ऊपर जो मांस नहीं होता उनको मसूड़ा बोलते जो
1: जी।
2: मैम वो मसूड़े जो है वो अचानक छोटे से बड़ा है, मतलब दोनों दांतों के बीच में बड़ा है। फिर उसको मैंने किसी डेंटिस्ट के पास गया था, फिर उसको मैंने सर्जरी करा दिया, मतलब उसको काट के निकाल दिया। तो मैम फिर मैम 5-6 महीने ठीक रहा, फिर मैम को उनको लग रहा है कि फिर हमारे जैसे उभर रहे हैं, थोड़ा सा चुनचुनाहट बनी हुई है। तो सर से मैं जानना चाहता हूँ कि सर ये है क्या?
1: जी सर पूछ बता रहे हैं।
0: देखिए ऐसा है कि कई इसको हम बोलते हैं गम एनलार्जमेंट।
1: ओके।
0: जो मसूड़े जो है वो फूले नहीं है पर वो साइज में बड़े हो गए हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तब मसूड़े फूल जाते हैं, या वो ऐसी हार्मोनल स्टेज में होती हैं तब भी उससे भी मसूड़ों पे असर पड़ता है, और कई बार मसूड़ों की बीमारी से भी दांत फूल जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ एक दवाइयां हैं, जैसे कुछ ब्लड प्रेशर की दवाई है या कुछ मिर्गी की दवाई होती है।
1: अच्छा।
0: जब हम वो खाते हैं तो उसका असर है कि मसूड़े फूल जाते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि इनको ये सब ऐसा नहीं होगा, और कई बार बिना किसी कारण के भी मसूड़े का साइज बढ़ सकता है। अब ये बता रहे हैं कि दो दांतों के बीच का एरिया, अब वो मसूड़ा है या कई बार मसूड़े जैसी बढ़ने जैसी एक कंडीशन होती है, कोई ग्रैनुलोमा हो गया है या एक टिश्यू का, जैसे टिश्यू ग्रो कर गया है, वो मसूड़े का टिश्यू भी हो सकता है। तो ये देख के ही बताया जा सकता कि क्या है, बट बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा हो सकता है,
1: पर
0: घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई कैंसर नहीं है, और ये अगर है तो इसका इलाज है। कई बार दवाई से होता है तो हम दवाई बदल देते हैं ताकि ऐसी दवाई दे जिससे मसूड़ा ना फूले, और अगर मसूड़े खराब है तो मसूड़ों का इलाज कर सकते हैं। और जैसे इनका इनकी शल्य चिकित्सा पहले से हो गई है, दोबारा मसूड़ा बढ़ गया है, तो उसका कारण जो है हमें आंकना पड़ेगा कि क्या क्या कारण, किस वजह से।
1: तो आप किसी के पास जा सकते हैं और एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। एक और हमारे कॉलर हमारे साथ हैं,
0: स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, स्पेशलिस्ट मसूड़ों के भी स्पेशलिस्ट होते हैं।
1: ओके, अच्छा अच्छा, तो उनको दिखाना चाहिए,
0: उनको दिखा सकते हैं।
1: आइए लेते हैं अपने अगले कॉलर को। हेलो
3: हेलो
1: जी, नंदलाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, मैं नंदलाल जी।
1: जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: मैं आनंद पर्वत से बोल रहा हूँ सर।
1: जी जी, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं?
3: डॉक्टर साहब को नमस्कार और आपको भी नमस्कार।
1: जी नमस्कार, नमस्कार।
3: मेरे दांत में एक खोड़हर है, जबकि इसका इलाज तो मैं कराया था, खिलता भी नहीं, दर्द भी नहीं इसमें है, लेकिन उसकी वजह से और कुछ नहीं हो सकता, दूसरे दांत को भी कोई नुकसान तो नहीं हो सकता?
0: हाँ देखिए, ये बहुत एक बहुत ही अक्सर लोगों के मन में रहता है कि दांत में कीड़ा लगा है, वही शायद नंदलाल जी का इशारा इनका उसी तरफ है कि दांत में खोल है और पेन भी नहीं हो रहा है और इसका असर के दूसरे दांतों पे नहीं पड़ेगा। तो देखिए, एक तो ये है कि ये जो खोल है, अगर आप इसका इलाज नहीं कराओगे तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और दांत को पूरा खोखला कर देगा, और फिर वो दांत हमें

0: दांत को या तो अपने आप टूट जाएगा और या दांत हमें निकालना पड़ेगा।
1: अच्छा।
0: और हाँ, ये है कि अगर इस दांत में कीड़ा लगा है, इसका मतलब ये है कि इनकी सफाई का भाव है, इसका मतलब ये अपनी जो माउथ का जो स्वास्थ्य है उसको ये बरकरार नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से अगर एक दांत में कीड़ा लगा है तो बाकी में भी लगने की आशंका है, या हो सकता है इनको पता ना हो, अर्ली स्टेज में हो, तो मैं इनको ये कहूंगा कि अपना चेकअप कराएं। और अगर इस कीड़े में, अच्छा कई बार क्या होता है जब कीड़ा लगता है तो वो दांत जो है वो डेड हो जाता है, और डेड हो जाता है तो बीमारी तो बढ़ रही है पर पेन हो नहीं रहा क्योंकि दांत तो डेड हो गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो पेन तो ये सोचते
1: मतलब सिम्टम नहीं हो पाए,
0: सिम्टम नहीं हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, बट वो तो खोखला कर रहा है।
1: ओके।
0: तो और फिर अगर उसका इलाज नहीं करेंगे तो बाद में उसका तो एब्सेंस फोड़ा बन जाएगा, दांत के जड़ के नीचे फोड़ा बन जाएगा और फिर सूजन हो जाएगी और फिर
1: तो
0: बहुत सारी
1: सीरियस,
0: हाँ बहुत सारी और कंडीशन हो। तो यही राय है नंदलाल जी से कि जाएं, दिखाएं और जो उसका इलाज है वो तुरंत कराएं।
1: जी, और मैसेजेस भी बहुत सारे आ चुके हैं। डॉक्टर साहब असम से लिख रहे हैं हितेंद्र दास जी, रेडियो डॉक्टर शो इज अ वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच कि आप सुन रहे हैं। और एक क्वेश्चन आया है, परिधि ने लिखा है दिल्ली से, नमस्ते शालिनी जी एंड डॉक्टर वर्मा, रेडियो डॉक्टर इज माय फेवरेट प्रोग्राम एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू अस। क्वेश्चन ये है कि अगर टूथ एक्सट्रैक्ट किया गया है और उसको किसी इम्प्लांट से प्लेस नहीं किया गया, उसको ऐसे छोड़ दिया गया, तो क्या ये ठीक है या बाद में कर कोई इशू बन सकता है, जैसे आपने बताया नहीं, छोड़ना नहीं है किसी।
0: नहीं देखिए, ऐसा ये भी बहुत मैं सोचता हूँ कि ये जो सवाल परिधि जी ने किया है वो उससे लाखों और जो श्रोता है हमारे उनको ये उसका जवाब मिलेगा। देखिए, ये अक्सर आता है कि निकाले तो क्या जरूरत है लगाने की। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी एक दीवार है उसमें से दो ईंटे निकल जाए तो उनको लगाना जरूरी है क्या? नहीं लगाएंगे तो बाकी ईंटे भी हिलेंगी, गिरेंगी। तो यही वही है जो दांत की भीड़ है, उसकी में भीड़ में से एक ईंट आप निकाल दोगे, एक दांत निकाल दोगे तो ऊपर के नीचे आएंगे साइड वाले जो है, क्योंकि दांत तो मसूड़े और जो जो हमारे जबड़े हैं उनमें इतना उतना जोर है। आप देखा ना, मसूड़ों से हम कार भी खींच लेते हैं, इतना जोर है मसल्स में, इतना हुआ है, वो क्या दांतों को हिलाएंगे? जगह है, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है बॉडी की कि अगर खाली जगह है तो उसको भरने की कोशिश होती है। तो ऊपर का दांत नीचे आ जाएगा, सारे टेढ़े हो जाएंगे, फिर उसमें विरल आ जाएगी, उसमें गैप आ जाएंगे, फिर खाना फटने लगेगा। तो देखिए, एक छोटी सी चीज जो है ना, वो कितना बड़ी इश्यू बना दिया उसने, उससे आपके मसूड़ों की बीमारियां हो गई, आपको कीड़ा लग गया, सिर्फ आपने ये एक था कि आपने वो दांत निकाला, आपने लगवाया थे, तो लगवाना चाहिए और तभी जो आपके सुचारू रूप से आपका जो मेस्टिकेशन है वो हो पाएगा।
1: तो बहुत अच्छा, अच्छी तरह से आपने समझाया कि वो एक बिल्डिंग की तरह है तो ये भूलेगा नहीं कोई भी, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न भी था और इसका जवाब भी आपने बहुत अच्छे से दिया कि वो एक बिल्डिंग मानो उसको और एक ईंट निकल गई तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको भर देना है, लेकिन या हम कई बार इसको इग्नोर कर देते हैं। अभी हमारे पास एक कॉलर वेट भी कर रहे हैं फोन लाइन पर, उनको ले लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार
1: जी। नमस्कार,
2: प्रीति गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी गौतम साहब,
2: मुझे ऑयल पुलिंग के बारे में पूछना है।
1: जी,
2: हमारे आयुर्वेद में भी मुंह में जो औषधि द्रव्य उन्हें रखते हैं और उन्हें गंडोष प्रक्रिया कहते हैं, तो मेरा पूछना है कि क्या ऑयल पुलिंग से कुछ लाभ मिलता भी है कि नहीं? और नंबर दो, ऑयल पुलिंग कितनी देर करें और उसके बाद फिर मुंह को साफ करना है कि नहीं, कृपया विस्तार से बताएं।
0: देखिए, ऑयल पुलिंग जो है ये आपका हमारा जो एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट मेथड है, वो हमारे हमारे जो हमारी जो ट्रेडिशनल डेंटल सर्जरी का ज्ञान है उसमें इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा कोई वर्णन नहीं है, बट मैं सोचता हूँ कि जो ऑयल पुलिंग है उसमें क्या है कि ऑयल जो है माउथ में रखते हैं और उससे जो है हम होल्ड करते हैं और फिर वो जो ऑयल है उससे उसको हम स्पिट आउट कर देते हैं। तो देखिए, ये एक पैलिएटिव तरह का रोल है, जैसे हम कोई माउथ वॉश करते हैं उसका असर है। तो देखिए, कोई ये कोई थेराप्यूटिक, अगर मैं इसको कहूं कि ये कोई थेराप्यूटिक इससे प्रिवेंटिव हो जाएगा, हाँ ये हो सकता है कि इसके बाद जो है हम बहुत सारी जो स्टिकी फूड है उस पे स्टिक नहीं करेगा, बट मैं कहता हूं कि जितने भी दांतों और मसूड़ों के विकार हैं वो लोकल कंडीशन से होते हैं, लोकल के उसमें खाना फंसा है या उसमें वो जो कैलकुलस हो गया है या प्लाक है या बैक्टीरिया है या सफाई का, उसकी वजह से। और इन सब कंडीशंस में जो ऑयल पुलिंग है वो उसका कोई ज्यादा बहुत रोल नहीं।

0: तक हम उसका उसकी हाइजीन नहीं करेंगे, खुद मेंटेन नहीं करेंगे, या हम डॉक्टर से प्रोफेशनल क्लीनिंग नहीं कराएंगे, तो ये जो जितनी भी जो भी हमारे टारगेटेड इश्यूज हैं जिसको जिससे हम बचना चाहते हैं, वो उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये बात हो तो हम सिर्फ माउथ वॉश ही करते रहें, उसी से सब चीजें जो है हम प्रिवेंट करें। तो मैं ये नहीं, मैं इसको नकारना नहीं चाहता, पर मैं ये चाहता हूं कि इसका जो रोल है बहुत सीमित होगा, क्योंकि ये हमारी जो ट्रेडिशनल डेंटल सर्जरी एलोपैथी में जो इसका जो ज्ञान है उसके बारे में कोई इसका कोई बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं है।
1: ओके तो हमारे श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं और मैसेज भी आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। और खासतौर पर डॉक्टर साहब आपने ये कहा था कि ये गीत निकालना और ये जरूर श्रोताओं तक पहुंचाना, कैसे कहें हम?
0: अब ये मैं यही तो कोशिश कर रहा हूँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे कहें हम,
1: तो
0: कैसे
1: कहूँ मैं, तो अब गीत के माध्यम से भी डॉक्टर साहब यही कह रहे हैं कि कैसे कहूँ मैं। तो चलिए ये गीत सुन लेते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं। वैसे डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से कह रहे हैं।
2: कहें हम प्यार ने हमको

0: हमसे खुद से हम।
1: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: आप हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज हमारा विशेष जो टॉपिक है वो है ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ, और मौखिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य, ये हमारा विषय है। हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, फॉर्मर डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड वाइस चांसलर है डॉक्टर साहब गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में। इसमें बहुत सारे हेल्थ इंस्टीट्यूट भी आते हैं जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप गवर्न कर रहे हैं, तो बहुत सारी जानकारी हमारे आज के डॉक्टर के पास है और आप निरंतर उसका फायदा उठा रहे हैं। आप हमें फोन भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, दूर दराज में ग्लोबली हमारा प्रोग्राम सुना जाता है ऐप के माध्यम से, न्यूज ऑन एयर हमारा ऐप है। तो ये हमारे पास मैसेज आया है लंदन से, विश्वास जी ने लिखा है, वेरी इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपने आज लिया है। इनका क्वेश्चन है कि इज वॉटर फ्लॉसिंग एज इफेक्टिव एज थ्रेड फ्लॉस?
3: यू नो, आई थिंक दिस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। आजकल ये वॉटर फ्लॉसर जो हैं,
2: ओके,
3: यू नो द बेस्ट थिंग इज कि ये जो वॉटर फ्लॉसर्स हैं काफी कन्वीनियंट है फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, और दे आर क्वाइट गुड।
2: अच्छा,
3: दे आर क्वाइट गुड।
2: ओके,
3: अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये दे आर एज इफेक्टिव, बट देखिए एक वॉटर जेट जो है, जो प्लाक है या फूड डेब्रीज है, उसको किस हद तक निकाल सकता है ये डिपेंड करता है किस तरह क्या स्टीम है, क्या डायरेक्शन है, उसमें कितना प्रेशर है, क्योंकि वाटर फ्लॉसर बहुत टाइप के हैं, बहुत हाई एंड भी है और बहुत बेसिक्स भी हैं। जबकि फ्लॉस जो है वो दंत धागा है, वो वैक्स धागा है जो आप फिजिकली आप कर रहे हो और आप इंश्योर कर रहे हो कि आपने दांत के जो बीच का सरफेस है उसको दोनों तरफ आपने उसको फिजिकली मूव किया है, उससे जो भी फूड डेब्री है वो निकल गया है। तो ये इफेक्टिवनेस पे है, बट मैंने देखा है कि मैंने खुद यूज किया है कि वाटर फ्लॉसेस आर क्वाइट गुड। आई वुड नॉट से कि दे आर ट्रूली सब्स्टिट्यूट टू अ रेगुलर डेंटल फ्लॉसिंग, बट दे आर फेयरली गुड।
2: So you recommend it?
3: Yeah, it's a good quality dental flosser, water flosser is okay.
2: जी, ऐसे ही एक और है प्रश्न, चित्रा सेठी जी लिख रही हैं अजमेर से, सर नाइट गार्ड क्या होता है और उसको लगाते वक्त क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए?
3: देखिए ऐसा है कि आज स्ट्रेस बहुत है और बहुत सारे जो हमारे जो भाई बहन हैं वो रात को जब सोते हैं तो दांत किड़किड़ाते हैं।
2: अच्छा,
3: उसे हम कहते हैं ब्रक्सिज्म, है ना, वो स्ट्रेस कारण भी हो सकता है या कोई और कारण भी हो सकता है। बच्चों में कहते हैं कि बच्चों के पेट में कीड़े हैं, हाँ, उसकी वजह से है, हाँ। तो ऐसा, बट ये देख रहा है कि आजकल ये बड़ा कॉमन है, बहुत सारे लोग जो है वो दांत ब्रक्स करते हैं, तो ये होता रात में जब हम सोते हैं, और उससे क्या है कि दांत ही घिसते नहीं है बट उसका पूरा अफेक्ट जो है, हमारा पूरा जो स्टोमैटोग्नाथिक सिस्टम है, हमारा पूरा जो जबड़े, मसल्स, टेंडन्स, टीथ, मसूड़े, पूरा जो एक अपराटस है उस पे पड़ता
2: अच्छा।
3: है, और क्योंकि स्ट्रेस भी है और फोर्स भी है और वेयर भी है, तो उसको बचने के लिए हम रात को एक बड़ा सॉफ्ट मटेरियल का एक कवर होता है, उस सिर्फ दांत को कवर करता है,
2: सिलिकॉन बेस होता है,
3: सिलिकॉन टाइप है, बड़ा मुलायम होता है
2: okay.
3: और बहुत पतला होता है, उसको वो डॉक्टर्स दांतों पे बना के देते हैं, कस्टमाइज है, ये नहीं है कि बाजार से आप खरीद लें, हर आदमी के दांत अलग होते हैं, तो बना के देते हैं, वो पहनते हैं ताकि आराम से वो सो सके और दांत आपस में किड़किड़ाए नहीं, और जो है एक प्रिवेंटिव अप्रोच है, दांत घिसे नहीं, और वो जो स्ट्रेस से जो ऑनस्लॉट होता है दांतों पे या मसूड़ों पे उससे बच,
2: तो ये भी हेल्प करता है।
3: हाँ, है ये प्रिवेंटिव अप्रोच है और बहुत बार ये प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स कि आपको गार्ड की, नाइट गार्ड की जरूरत है।
2: ठीक है, तो हमारे कॉलर्स वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो,
4: नमस्ते मैडम
2: जी। नमस्कार,
4: आपका नाम शालिनी मैडम है ना?
2: जी हाँ, मैं बोल रही हूँ शालिनी।
4: तो आप अच्छे से कार्यक्रम वाले, आपके लिए धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: अच्छा डॉक्टर साहब से पूछना है,
2: आप अपना नाम बता दीजिए।
4: रघुवीर जी, उत्तराखंड।
2: जी जी रघुवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं इसके लिए भी।
4: अलग अलग विषय में आप जो स्वास्थ्य के बारे में अच्छा अच्छा प्रोग्राम दिखा रहे हैं, अच्छी बात है।

0: लिया, आप सुनिए हमारे कार्यक्रम
1: क्योंकि
0: को, वो डेली हम आते हैं रेडियो डॉक्टर लेकर 3 से 4 बजे,
1: क्योंकि आसाम से लेकर कहीं से मतलब पूरा हिंदुस्तान का कहीं से भी कॉल आ सकता है ना, बहुत अच्छी
0: जी
1: बात।
0: और मैसेज आते हैं हमारे बाहर से भी, विदेशों से भी, अभी मैंने लंदन से मैसेज इंक्लूड किया है, तो मैसेज के माध्यम से हम पूरी दुनिया से जुड़े हैं। और आज डॉक्टर महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार रघुवीर जी।
1: अच्छा मैं आपको थोड़ा हंसने वाले मूड्स में बोल रहा हूँ
2: जी
1: कि दांत मोती जैसा चमकना चाहिए, जैसे तो टूथपेस्ट तो हम कर देते हैं, तुम ब्रश कर देते हैं, तो मोती जैसा चमकना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा लोशन लाएं, हम लोशन लगाएं दांत लगाने में?
2: मोती जैसे चमकने के लिए मोतियों जैसे काम करने पड़ते हैं शुरू से, वो जो है वो अब इसके बारे में हम सोचते हैं जब बहुत कुछ हमारे हाथ से निकल चुका होता है, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए लोशन कुछ नहीं होता, ये हमारा एफर्ट्स हैं कि एक तो हमारा जो एटीट्यूड है कि हमें अपने दांत और मसूड़े सही रखने हैं, दिन में 2 बार ब्रश करने हैं, 2 बार 2 मिनट, और साल में 2 बार में हर 6 महीने में आप डॉक्टर को दिखाएंगे। और एक चीज जो है हम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में अनभिज्ञ हैं, वो है डेंटल फ्लॉस। देखिए अब ब्रश करने के बाद 40% जो हमारे दांतों का एरिया है, जो दांतों के बीच का है, उसे हम साफ नहीं कर पाते, तो फ्लॉस करें, फ्लॉस सीखें, एक धागा होता है जिससे हम दांतों के बीच में साफ करते हैं, संतुलित भोजन करें, और खाने के बाद कुल्ला करें, और मीठी चीजें कम खाएं, मांडदार चीजें कम खाएं, ये नहीं मैं कह रहा नहीं खाएं, खाएं जरूर, पर उसके बाद कुल्ला करें, तो एक छोटी छोटी देखिए छोटी चीज है, आपका जो छोटी एफर्ट है वो छोटी देखभाल बड़ा स्वास्थ्य प्रभाव, ये मैं कहूंगा कि दांत का एफर्ट्स बड़ी छोटी छोटी हैं, पर उसका इतना विशाल प्रभाव है हम दांतों पे भी और हमारे हमारे शरीर पे भी, और रोकथाम की शुरुआत जो है वो मुंह से होती है। तो हम अगर अपना इसके बारे में हम सजग रहें और इसके बारे में हम अवेयर रहें, तो हम बहुत कुछ जो है फिर मोतियों जैसे दान जो है वो हम हमेशा जिंदगी के लिए, ये मोती हैं, सचमुच मोती हैं जिसे हम गवा देते हैं, या मोतियों को बदरंग कर देते हैं, मोतियों को घिस देते हैं, मोतियों को तोड़ देते हैं, उनको क्रैक कर देते हैं, तो ये सब चीजें देखिए मोती जब होते हैं ना हमारे पास तो किस तरह से हम संभाल के रखते हैं, हम देखिए ना कि महिलाएं कैसे उनको वेलवेट शनील के पैकेट में डाल के रखती हैं, तो उसी तरह से हमें दांत को मोतियों की तरह हमें सजो के रखना है।
0: ये हमारे जो दांत हैं ये बहुत प्रेशियस
2: हैं, प्रेशियस
0: इनको भी हमें संभालना चाहिए,
2: इसको हम पत्थर की तरह ना इस्तेमाल करें ना, कि कहीं कोई भी चीज कर ली, बोतल खोल ली, ये कर लिया, ऐसे मुंह से तोड़ लिया, ये चीजें नहीं, वो भी तो कोमल है, उसमें भी जान है, उसको हम बेजान मत बनाइए।
0: अच्छा डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया खाने के लिए, एक जो बहुत आम चीज है वो है चाय और कॉफी, ये हम बहुत पीते हैं, और खासतौर पर ऑफिस में आजकल जो एक ट्रेंड सा है कि हम थोड़ा भी फ्री हुए तो हमें लगता है चलो कोई आया है तो चलो चाय पी लो, कॉफी पी लो, ये क्या कितना नुकसान कर सकते?
2: देखिए चाय और कॉफी में टैनिन होता है which is an astringent। देखिए चाय कॉफी के 2-3 इश्यूज है, अगर चाय में मीठा है और दूध है तो दोनों चीजें जो हैं ये बैक्टीरियोजेनिक है, दैट मींस मीठा और दूध वो आइडियल मीडियम है बैक्टीरिया के पनपने के लिए, तो हम चाय पीने के बाद अक्सर कुल्ला तो करते नहीं है, तो ये जो है एक ग्राउंड बन जाता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। कॉफी क्या है कि कॉफी अगर मीठी है तो वही यही सिचुएशन है, और कॉफी वैसे भी स्टेन करती है, आपने देखा होगा कॉफी पी के, हम हमारे भारतवर्ष में हम हल्दी यूज करते हैं तो हमारे दांत जो है अक्सर पीले पड़ जाते हैं, जबकि ये हल्दी बाहर के विदेशों में लोग हल्दी यूज नहीं करते तो उनके दांत थोड़े कम येलोइश होते हैं, तो बट ये इसके अलावा कोई अगर स्टेन्स हो गए हैं तो हम दांतों की क्लीनिंग करा सकते हैं, कई बार बदरंग हो जाते हैं दांत तो ब्लीचिंग भी हो जाती है ना, बट ब्लीचिंग भी एक केमिकल प्रोसेस है, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है और कहीं ना कहीं नुकसान भी है ना, उसका दुष्प्रभाव दांतों पे भी पड़ सकता है, मसूड़ों पे भी पड़ सकता है, दांत थोड़े सेंसिटिव भी हो सकते हैं, और फिर हर बार आपको कराना पड़ेगा, तो ये हम यही सोच के चलें कि जब हम चाय कॉफी का सेवन करें तो उसके बाद कुल्ला करें, ताकि जो उसका जो इमीडिएट दुष्प्रभाव है दांतों पे या मसूड़ों पे या

0: पूरे माउथ में उसका जो है इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। जी
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे हम आज हमारा जो विषय है वो हम ओवरऑल हेल्थ की भी बात कर रहे
0: जी
1: हैं
0: जी जी
1: मौखिक स्वास्थ्य से, तो खास तौर पर कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिससे
0: जी
1: लगता है कि भाई ये ना हो जाए। वैसे तो सारी बीमारियां हम गिना सकते हैं, लेकिन क्या हार्ट डिजीज और डायबिटीज से भी ओरल हेल्थ का कोई रिलेशन है?
0: देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर हुई है, और पहले तो हम लोग कहते कि नहीं ये रिस्क फैक्टर है, पर एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो मॉडिफाइबल है। कहने का मतलब वो रिस्क फैक्टर का कंट्रोल आपके हाथ में है। अगर आप अपने ओरल हेल्थ को बेटर कर सकते हैं तो इस रिस्क फैक्टर को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और बहुत सारी स्ट्रांग एसोसिएशन है कि अगर दांत खराब है या ओरल हेल्थ आपका ठीक नहीं है तो उसका जो इफेक्ट है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे भी पड़ता है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आजकल बहुत सारे होते हैं उससे भी पड़ता है, और क्रोनिक गम इन्फ्लेमेशन जो है वो लिंक्ड है एथेरोस्क्लेरोसिस पे, जो आपने देखा होगा कि आजकल प्लाक हो जाता है और उससे स्ट्रोक हो सकता है। और ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक बहुत सारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के द्वारा जो है इसको स्थापित किया। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि जो ओरल बैक्टीरियास और जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्लड जो मसूड़ खराब होते हैं तो मसूड़ों के अंदर चले जाते हैं, और उससे क्या है कि जो सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन है वो ट्रिगर होती है, और बहुत सारे जो जो बायोमार्कर्स हैं, चाहे वो सीआरपी है, इंटरल्यूकिन है, टीएनएफ है, वो सारे बायोमार्कर्स के द्वारा इन्फ्लेमेशन सेटअप होती है बॉडी में, और जिससे क्या है जो हमारे आर्टरीज का एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है और प्लाक फॉर्मेशन होता है आर्टरीज में, और एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, और फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि डायबिटीज और जो गम डिजीज है इसका एक बड़ा बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, कि जिनको ये देखा गया है कि जिन लोगों को गम डिजीजेस है उनको लगभग 25% लोगों को हायर रिस्क होता है डायबिटीज होने का। तो यानी गम डिजीज से डायबिटीज हो सकती है, और जिनको डायबिटीज है उनको हाई रिस्क होता है गम डिजीज का। तो एक एक बाई डायरेक्शनल जो है टू वे रिलेशनशिप है कि गम डिजीज से डायबिटीज हो सकती है, और जो डायबिटिक है उनको उनको गम डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते
1: जी,
0: हैं,
1: जी, जी.
0: और ये प्रूवन फैक्टर है। तो ये एक दो तरफा का संबंध है, गम डिजीजेस और हमारी जो सिस्टमिक
1: और
0: कंडीशंस
1: डिजीजेस
0: हैं। जी
1: जी. हमारे एक श्रोता है, काफी देर से लाइन पर वेट कर रहे हैं. आइए बात करिए, आप क्या पूछना है आपको डॉक्टर साहब से? हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: जी समाल, आप रेडियो डॉक्टर में हैं और काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे. चलिए पूछिए, क्या पूछना है?
2: नहीं, पहले तो ये जी डॉक्टर साहब आते हैं, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम लगता है, हर तरह की
1: थैंक यू
2: इसमें हाँ बात होती है.
1: जी
2: सर, मैं ये पूछ रहा था, कस्बा किठौर जिला मेरठ से बोल रहे हैं सलाउद्दीन
1: जी,
2: ये आरसीटी कराने के बाद कितने दिन में कैप चढ़ाना चाहिए इसमें?
0: जी सलाउद्दीन जी, सलाम.
2: वालेकुम सलाम
0: जी. सलाउद्दीन जी, ऐसा है कि एक तो आरसीटी का जब से इजाद हुआ है ये सबसे बढ़िया तरीका है दांतों को बचाने का. जो दांत निकलने वाले थे उनको हमने आरसीडी करके बचा लिया. बट क्या होता है कि आरसीडी के बाद क्योंकि दांत अंदर से खोखला हो गया था और फिर हमने उसको आरसीडी कर दिया तो वो दांत थोड़ा सा एक एक उसमें एक थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाता है. यानी मैं कहूंगा, ये तो नहीं कहूंगा कमजोर हो जाता है, बट उसमें टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. और कई बार क्या होता है आरसीडी की वजह से या कीड़े की वजह से दांत पहले से ही खोखला होता है, तो उसको अगर हमें पुनः स्थापित करना है तो उसके ऊपर हम आवरण यानी उसके ऊपर कैप लगाते हैं. और मैं तो ये कहूंगा कि जैसे ही आप आरसीटी करें उसके तुरंत बाद आप कैप लगवा दें. कि वेट क्यों करें? क्योंकि वेट हो सकता है कि जब आप वेट कर रहे हैं उस दौरान वो दांत टूट जाए, बिकॉज पता थोड़ी लगता है. क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उस दांत पे फोर्सेस पड़ती हैं या प्रेशर आता है तो उसमें टूटने के चांसेस है, वो कभी भी टूट सकता है. तो हम वेट क्यों करें? मैं ये चाहूंगा कि रूट कनाल के तुरंत बाद आप, और कई बार क्या है डॉक्टर जो है दोनों चीजें साथ ही साथ करते हैं, रूट कनाल भी करते हैं उसके बाद तुरंत कैप लगा देते. तो मेरी सलाह तो यही है कि आप जितना जल्दी हो सके इसका उस तरह से इलाज करें.
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको सही जवाब डॉक्टर साहब के जरिए मिल गया. और यहाँ पर एक बार रुकेंगे, एक गाना सुनकर वापस आएंगे. आप इसी तरह से हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए, और जो भी आपको लिखना है या पूछना है डॉक्टर साहब से पूछते रहिए. हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर महेश वर्मा और

वेलकम बैक। आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और रेडियो डॉक्टर में आज काफी सारी बातचीत हो चुकी है ओरल हेल्थ और ओवरऑल हेल्थ पर, और डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं, समय तो नहीं होगा कि सबको हम विस्तार से ले पाएं, पर मैं नाम पढ़ देती हूं जो श्रोता समय निकालकर हमें लिख रहे हैं। जानकारी डॉक्टर साहब ने अपने बातों में पूरी कवर कर ली है ऑलमोस्ट, तो आप सबको जवाब मिल गया होगा अगर आप हमारे साथ पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहे होंगे। हमें मैसेज किया है नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से। हमें मैसेज आया है, लिखने वाली हैं रेणू फ्रॉम मेरठ यूपी। इसके बाद हमें मैसेज मिला है नीरज पांडे जी का, साथ ही साथ श्याम मित्तल जी ने लिखा है 75 वर्ष के हैं रोहिणी से। शालिनी जी, डॉक्टर वर्मा ने बिगनिंग में जो वर्ड्स कहे वो अनमोल हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पूरे प्रोग्राम अबाउट ओरल केयर इसी में ही समाहित हो गया था जो आपने शुरू में बोला था, इसकी उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और डॉक्टर अनिल कालरा ने हमें लिखा है गुरुग्राम से कि शालिनी जी, आई एम अ रेगुलर लिसनर, इट इज अ वेरी गुड प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और राहुल लिख रहे हैं दिल्ली से, कुछ प्रश्न हैं डॉक्टर साहब से, और उसके जवाब डॉक्टर साहब अपने कार्यक्रम में जो आरंभ में दे चुके हैं। इसके अलावा शिव जी ने लिखा है हमें मेरठ से, और लिखा है बलजिंदर जी ने भी दिलशाद गार्डन दिल्ली से लिखा है, और हमें मैसेज किया है रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता ने ओखला संगम विहार से, इन्हें कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, तारीफ की है इन्होंने हमारे कार्यक्रम की। और नीता ने लिखा है अमरावती महाराष्ट्र से, इसके अलावा कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रहे हैं रविंदर पाठक, आशा पाठक नीदरलैंड से, इन्होंने लिखा है कि बहुत बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने इस कार्यक्रम में दी है, धन्यवाद दे रहे हैं। सिक्किम से नामची से

0: मनिका ने हमें मैसेज किया है और ये मैसेज है सुनील कुमार जी ने यूपी से किया है। एक प्रश्न और आया है डॉक्टर साहब, उन्होंने हमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक ब्रश जो होते हैं वो कितने काम करते हैं। मैं नाम ढूंढ रही हूं, अभी अगर नाम मिलेगा तो मैं आपके जवाब के बाद बताऊंगी उनका नाम। तो इलेक्ट्रिक ब्रश क्या हेल्प कर सकते हैं?
1: देखिए, इलेक्ट्रिक ब्रश जो है, जब इनकी शुरुआत हुई थी तो जो स्पेशल नीड्स के लोग थे उनके लिए इजाद हुआ था।
0: अच्छा।
1: और फिर बाद में इसमें बहुत सारी बदलाव आए और आज ये है कि बहुत ही प्रचलित है और बहुत ही लाभकारी है। इनफैक्ट मैं जब यहाँ इंस्टीट्यूट में था तो मैं बहुत सारे अपने मरीजों को जो अपनी सफाई अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे तो मैं इनको ये प्रिस्क्राइब करता था और मैंने देखा कि इस पे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये है कि इसका जो ब्रश है बहुत छोटा, इसका जो टिप है, ब्रश की टिप है वो बहुत छोटी है और वो गोल है और वो हमारे दांतों के हर, माउथ के हर पार्ट में आसानी से पहुंच सकती है। दूसरा यह है कि वो इलेक्ट्रिक से चलता है तो क्या है कि उससे जो है वो जो सुविधा होती है कि आपको उतना ही क्योंकि इसमें कई में प्रेशर के सेंसर्स भी होते हैं कि अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ये रुक भी जाएगा या कम हो जाएगा और ये अलार्म देगा या इसका एक रेड लाइट जो है वो जलने लगेगी। तो कई बार हम देखा कि आजकल बहुत सारे लोगों को सेंसिटिविटी होती है क्योंकि दांत घिस गए हैं या जब हम ब्रश करते हैं तो बहुत जोर से ब्रश करते हैं और बहुत हार्ड ब्रश यूज करते हैं, उससे जो है दांत का ऊपर का जो आवरण है वो घिस गया है तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। तो इन सब चीजों को अगर देखें तो ओरल जो ये इलेक्ट्रिक ब्रश है ये बहुत ही लाभकारी है।
0: जी, बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं?
1: हाँ, बच्चों का भी एक छोटे साइज का आता है बट बच्चा इतना बड़ा हो कि वो समझ सके और उसको हैंडल कर सके। तो देखिए, है तो ये ब्रशिंग ही, ओनली थिंग के हम अपने उसको मैनुअली की बजाय वो एक एक बैटरी से चल रहा है, चार्ज्ड है, बैटरी से चल रहा है और उसमें क्या है, कंसिस्टेंसी है और यूनिफॉर्मिटी है और क्योंकि स्ट्रोक्स कई बार हम नहीं लगा पाते हैं, हम कहते हैं ना नीचे के दांतों को ऊपर की तरफ करो और ऊपर वाले दांतों को नीचे की तरफ करो, जो हम कई बार मैनुअली नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत इफेक्टिव है और इसमें कोई इसपे अगर लोग मैनुअल से ठीक है तो मैनुअल कर सकते हैं, ये नहीं कि सभी को ये करना है पर जो इससे कंफर्टेबल है वो उनमें कोई इसमें कोई बुराई नहीं है, वो यूज कर सकते हैं और ये क्वाइट इफेक्टिव गैजेट है।
0: जी जी, तो मुझे नाम मिल गया है, राधिका जी ने दिल्ली से ये प्रश्न किया था। तो उम्मीद है राधिका जी के साथ साथ बहुत सारे और लोगों के मन में जो ये प्रश्न था
1: उनको। थोड़ा महंगा होता है
0: जी,
1: तो अगर आप मैनुअल जो है वो बहुत सस्ता है, मैनुअल से अगर आप खुश है, और इसका बेस्ट ये है कि इसकी जो टिप है वो भी हम चेंज कर सकते हैं।
0: तो करनी भी चाहिए क्या?
1: करनी चाहिए जब वो भी उसमें भी ना एक डाई होती है। अच्छा। वो जब डाई ब्लू डाई होती है या और ब्लू नॉर्मली ब्लू या ग्रीन होती है तो जब वो समय के साथ वो डाई सफेद हो जाती है, यानी जब वो घिस जाता है तो उसका रंग बदल जाता है, तो एक इंडिकेटर है कि इट्स इज टाइम नाउ टू चेंज द टिप। जी
0: चलिए, एंड अब इट्स टाइम नाउ टू क्लोज आवर प्रोग्राम बिकॉज 4 बजने वाले हैं और अब समय नहीं है कि हम आगे और डॉक्टर साहब से और बातचीत कर सकें। तो धन्यवाद सभी को कि आपने इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता की और आज का रेडियो डॉक्टर अब हम समाप्त कर रहे हैं। विषय था ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ और हमारे विशेषज्ञ हमारे रेडियो डॉक्टर थे प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा, फॉर्मर डायरेक्टर प्रिंसिपल मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज एंड वाइस चांसलर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। धन्यवाद डॉक्टर साहब यहां आने के लिए, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार शालिनी जी
0: और सभी श्रोताओं को शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। एक जमाना

0: भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

जाना मुझे न बुलाना के मार गताना जमाना कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मार गताना जमाना।

0: FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसीं सुन रहे हो अपना फेवरेट प्रोग्राम युववाणी। मैं हाँ थोड़ी आरजे दोस्त खुशी।
1: ते मैं हाँ प्रीति।
0: ते अज प्रीति बड़ा ही खास दिन है, अज असी मदर्स डे सैलीब्रेट कर रहे हैं। अज बहुत ही खास दिन है बच्चियां लई, उन्हां दी मावां दे लई, ते सारियां दे लई मैनूं लगदा, क्योंकि हर एक बच्चा हर एक इंसान अपनी माँ नाल बहुत ही ज़्यादा प्यार करता, जुड़िया हुंदा है दिलों।
1: क्योंकि पता है खुशी, जदों आप एक ऐसा पर्टिकुलर परसन जिहड़ा अपनी लाइफ दे विच है, वह सिर्फ मदर ही है जिहदे नाल आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं, अपनी लाइफ का हर इंसीडेंट अपना मूवमेंट जिहड़ा है शेयर किया जा सकता है सिर्फ अपनी माँ दे नाल।
0: बिल्कुल प्रीति, मैनू ना एक बहुत खूबसूरत गल याद आ रही है, जो तुसी कहो तो मैं सुना देवां।
1: जरूर।
0: कि बोड़ दी ठंडी छावां वर्गा, बोड़ दी ठंडी छावां वर्गा, प्यार नहीं लभदा मावां वर्गा, ते माँ दे सां ने बरकत वाले, माँ दा रूप खुदावां वर्गा, माँ दा रूप खुदावां वर्गा, धुप्पां दे विच ओहदा साया, धुप्पां दे विच ओहदा साया, ठंडियां ठार हवावां वर्गा, ते माँ दे नाल ही घर दी रौनक, माँ दा हथ दुआवां वर्गा। ओह होवे तां सारा घर, ओह होवे तां सारा घर, लगदा जनती थावां वर्गा, बोड़ दी ठंडी छावां वर्गा, प्यार नहीं लभदा मावां वर्गा।
1: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 24 hours 7 days ਕੰਮ ਕਰਨਾ, 365 days ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
0: ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
1: ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ

0: तो दोस्तों एक खूबसूरत जे गीत तो बाद असी आ गए हैं वापस तुहाडे लई कुछ होर खास गल्लां बातां लै के। तो जिवें तुसीं जानदे हो कि अज संडे है, छुट्टी दा दिन है, तो अज दे दिन साडा एक खास सैगमेंट हुंदा है जिहदा नाम है गौंदा पंजाब, जिहदे विच असी तुहाडी फरमाइशां लैंदे हां।
1: तो तुसीं अपनी फरमाइश किदां भेजनी है, फोन चक्को तो डायल करो 0181-2342-174 ਅਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਸੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: या फिर किसी दे लई थोड़ा जिहा चुक के गल करना, अदब करना।
1: मतलब ये है कि खुशी अज के टाइम दे विच ना मोस्टली लोग मॉडर्न तो हो गए है, बट उन्होंने तमीज़ है नहीं। लाइक मतलब वो कि जिस तरीके ना गल की जाए ना किसी बाहरले पर्सन दे नाल, उस टाइम भी जे मतलब काफ़ी हाई लेवल है या कुछ मोमेंट्स इदा दे होंदे, आपां बाहर कितें चल जाने या कोई छोटी मोटी गल हो जाए तो आपां अपने जिहड़ा लहजा बदल जाता है, ते अपने तो वड्डे नूं भी सम टाइम नहीं रिस्पैक्ट दिंदे। वो जिहड़ा लहजा है, बेशक तुसीं किन्ने भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन लहजा बहुत ज़रूरी है, बोलन दा तरीका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तुहाडी पर्सनैलिटी दा बहुत वड्डा पार्ट है। एक अदब ज़रूर होनी चाहीदी है तुहाडे बोलन दे विच।
0: बिल्कुल दोस्तों, कई लोग होंदे ने जिन्हां नूं राइट गल राइट टाइम ते बोलनी आंदी है। उन्हां नूं पता हुंदा है कि केड़ी गल असीं केड़े टाइम करनी है, बट उन्हां नूं ये नहीं पता हुंदा कि केड़ी गल किस तरीके नाल करनी है। अगर असीं उस गल नूं सही टाइम ते बोल रहे हैं, तो उहनूं बोलन दा सही तरीका जे असीं आजमाइए, तो उहनूं ही कहा जांदा है अदब। अदब मदरस डे दे नाल भी असीं इहनूं जे रिलेट करिए, तो असीं अपनी माँ दे प्रति भी अदब सत्कार रख सकते हाँ।
2: Tell me.

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित

यस यस यस यस यस से इट अगेन आई एम द बेस्ट। जी हाँ बिल्कुल, जदों भी लाइफ के विच कुछ इदा लगे ना कि यार कुछ भी मेरे कंट्रोल दे विच नहीं हो रहा, शायद लाइफ के विच कुछ वधिया हो जाता, काश कोई मैजिक हो जाए, जस्ट शीशे के सामने खड़े हो जाओ, से दिस थिंग टू यू ना कि आई एम द बेस्ट एंड आई प्रोमिस आ जो चार वर्ड है ना यह जेन्युइनली थोड़ी लाइफ तो मैजिक बदल देंगे ना, क्योंकि अक्सर असी ना लोगों तो अपनी जी तारीफ है वो सुनना चाहते हैं, अक्सर असी लोगों तो सुनना चाहते हैं कि यार तुसी कुछ बहुत वधिया किया, लेकिन मैं लगता है कि द रियल मोटिवेशन द जी असली तारीफ हैगी ना वो तुहाडे अंदरों ही निकलती है। सो ऑलवेज से यू आर द बेस्ट। सवेरे उठ के अपने लिए मंत्र जोड़ा है बना लो, रात सौन तो पहले अपने लिए मंत्र बना लो, क्योंकि जिंदगी का जो फलसफा है ना उस छुपे होएगा, तो द मूवमेंट यू स्टार्ट बिलीविंग इन दिस फैक्ट ना उस तो बाद दुनिया की इदा की कोई चीज़ नहीं है जी तुम्हें अगे वधन तो रोक सकती है कि नहीं है। सो जिंदगी का मंत्र शुरू करके वीकेंड की प्यारी जी शाम को मैं लैके थोड़ा दोस्त जोड़ा है तुम्हारा छुड़ गया जी दिन दिना दिन आर जे सचिन। सो की गल हो मस्ती होएगी, मजा होएगा, वीकेंड की जिन्नी थकावट है सारी दी सारी उतार देंगे भाई। बारिश का जरा हल्का हल्का अंदेशा है ना वो कल वास्ते आ गया है, तो इस करके अज की रात का मौसम जो है बहुत ठंडा ठंडा होने वाला। सो इसी ठंडे मौसम को होर ज्यादा मजेदार बनावेंगे बहुत सारे प्यारी गल्लां नाल, बहुत सारे प्यारे प्यारे गीतां नाल, ते बहुत सारी प्यारे प्यारे मैसेजेस नाल भी, क्योंकि दिल च हाथ जुड़ेगा जी। सदा दसदा कि आज की चार घंटे की महफिल दे विच की होगा, वैसे तो मैं लगता नहीं कि महफिल दसन की जरूरत होंगी, लेकिन मैं जिम्मेदारी है जिदा मैं हमेशा कहना है। सो दस दिए कि 7-8 चलेगा जी फिल्मी दुनिया के गॉसिप, जिसे फिल्मी दुनिया के की चल रहा है, कि थिएटरिकल रिलीज है, कि अगर तुम ओटीटी प्लेटफॉर्म उत्ते जाके कुछ देखना चाहते हो तो की सजेशन है मेरे वालों जरूर फॉलो कर सकते हो। उस तो बाद जी आप 8 बजे मिलेंगे तुहाडे नाल एह मेरा पंजाब, तो पंजाब की अज कोई दिलचस्प कोई तड़कती भड़कती गल है कि मैं तुहाडे नाल जुड़ांगा 8:30 बजे आ जाएगा जी स्पोर्टी स्पोर्टी संडे।

9 बजे आ जाएगा जी। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, है कि नहीं है? सो चमकीले दिन दी या चमकीले मैसेजेस दिया, चमकीली फरमाइशों को लेके मैं 9 बजे जुड़ जाऊंगा जी। दिल चाहता है दिविच, तो उस तो बाद 10 बजे होएगा होश वालों को खबर, क्या शामे गजल क्या चीज है। तो शामे गजल लेके जी जुड़ जाऊंगा 10 बजे, तो 10:30 होएगा जी। बैक टू बैक सॉन्ग्स, एक प्यार का नगमा है, मौजों की सुहानी है कि नहीं है जी। सो जी अगले 4 घंटे की महफिल में तुम दस दिया कि कुछ होने वाला है, तुसी की करना है। अगर तो निकले हो गेड़ी देते, क्योंकि संडे की शाम भाई गेड़ी मारन जरूर निकले हो गए, तो बस मेक श्योर करना है कि अपनी सीट बेल्ट जी है वो जरूर लगानी है, ट्रैफिक रूल्स जोड़े है वो प्रॉपर वे दे नाल फॉलो करने, रेड लाइट बिल्कुल जंप नहीं करनी हैगी। मेक श्योर कई बार ना असी मतलब थोड़े जे इमोशन थोड़े जे मोमेंट्स बैक ना ओवर स्पीड कर देने, मेक श्योर करो कि इतनी कोई हरकत नहीं करनी, जस्ट कीप काम कीप इंजॉय। तो अगर तुम टू व्हीलर हो तो गेड़ी मार रहे हैं तो भाई हेलमेट जरूर कैरी करो, रेड लाइट्स बिल्कुल ना जंप करो, क्योंकि ऑनलाइन चलान जिदा मैं दस्या करा तुर पे ने। सो मेक श्योर इतना पूरी बहुत सारी गल्ला बात लैके मैं तुम्हारे जुड़ गया। तो फिल्मी दुनिया हूँ आप श्री गणेश करते हैं, शटर खोल देंगे फिल्मी दुनिया का, शांत श्रेय घोषाल की आवाज़ प्यार है जो ट्रैक तो

विवेक शर्मा जी ने जो तो अमिताभ बच्चन जी ने एक कहानी सुनाई ना, तब पूरी कहानी सुनाने उन्होंने लगभग लगभग 2 घंटे लग गए। तो 2 घंटे बाद अमिताभ बच्चन जी ने सिर्फ इना किया,

कहानी बढ़िया है। तो विवेक शर्मा जी उन्होंने गाजल सुन के सिर्फ यह कहना चाहते सी, कुछ तो पता अमिताभ कुछ तो बता ला ला ला। अमिताभ जी ने उस टाइम कुछ भी नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि विवेक जी तुम कर जाओ मैं तुम्हें दस दूंगा। तो चार दिन बाद जो प्रोड्यूसर के नाल विवेक जी की दोबारा गल हुई तो उन्होंने कहा कि अमिताभ जी को कहानी बहुत पसंद आई है, तो वह इस मूवी के किरदार निभाने वास्ते तैयार है। जी हाँ, 9 मई 2008 में रिलीज़ हुई अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म भूतनाथ में, अच रिलीज़ हुए लगभग 18 साल हो गए हैं। तो दस दिए कि 20 करोड़ की कमाई वाली बनी है इस फिल्म ने, 23 करोड़ 89 लाख की जी कमाई सी वो की। फिल्म जी वो एवरेज जरूर है, लेकिन पार्ट टू जरा वो काफ़ी ज़्यादा हिट रहा, बिकॉज पार्ट टू के टॉपिक जरा बड़ा ही ज़्यादा सेंसिटिव से, बहुत ही पॉलिटिकल मुद्दा जरा उसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके पेश किया गया। लेकिन जरा पार्ट वन से जरा कि 18 साल पहले भूतनाथ फिल्म रिलीज़ हुई सी, फिल्म के विवेक शर्मा ने डायरेक्ट की, विशाल शेखर का म्यूजिक से, जावेद अख्तर जी ने सारे के सारे फिल्म के गीत जो लिखे थे। एक्चुअल आ फिल्म इदा की फिल्म से जिदे मेकरस ने बहुत स्पेसीफिकली क्लीयर करता सगा कि इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी आएगा। लेकिन जो दूसरा पार्ट आने की खबर शुरू हुई तो पहला पार्ट खत्म हुआ, तो फिल्म की परफॉर्मेंस में लैके शायद आ चीज़ गैस की गई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि अमिताभ बच्चन जी दूसरे पार्ट के नज़र नहीं आएंगे। कास्ट जी हैगी पूरे तरीके चेंज कर दी जाएगी, लेकिन इस तरीके कुछ भी नहीं होएगा। कास्ट जी हैगी है बिल्कुल उही रही, शाहरुख खान जी ने हालांकि इस मूवी के कैमियो जरा वो किया। जो विवेक शर्मा ने शाहरुख जी के इस बारे गल की मूवी बारे, तो उन्होंने कहानी जी वो इन्नी ज़्यादा पसंद आई थी, वो चाहते थे कि विवेक शर्मा इन्हों उन्होंने जो प्रोडक्शन हाउस है रेड चिलीज है वो अंडर बना। लेकिन विवेक शर्मा ने कहा कि वो इस तो पहला ही BR प्रोडक्शन हाउस के जी है वो गल कर चुके हैं। तो शाहरुख खान बींग शाहरुख खान ही वॉज सो हैप्पी, उन्हें बड़ी ही खुशी के नाल चीज़ जताई। तो उन्होंने कहा कि कोई गल नहीं, एज अ प्रोडक्शन तौर पर नहीं, मैं एज एन एक्टर या एज अ कैमियो के तौर पर उस फिल्म काम जरूर करूँगा। दस दिए कि BR चोपड़ा 90s के अमिताभ बच्चन शाहरुख खान तो जूही चावला के नाल एक मूवी बनाना चाहते थे, तो उस मूवी का नाम सेगा एक और मसीहा। हालांकि यह मूवी जी है वो उस टाइम बन नहीं पाई, लेकिन भूतनाथ के जरिए BR चोपड़ा जिस स्टारकास्ट इकट्ठा करना चाहते थे, जूही चावला शाहरुख खान तो अमिताभ बच्चन जी ने तिना इकट्ठा करने के कामयाब हो पाए। तो जिदा मैं तुम्हें दसिया कि विवेक शर्मा जी ने पूरी जी जान ला के अमिताभ जी ने कहानी सुनाई से भूतनाथ के किरदार वास्ते, तो अमिताभ जी ने बड़े ही नॉर्मल रिएक्शन देता। तो विवेक जी कंफ्यूज जरूर रहे, लेकिन बाद चो अमिताभ जी की जो BR चोपड़ा ने गल हुई तो BR चोपड़ा ने विवेक जी ने दसिया कि वो मूवी के काम करने के लिए रेडी है। हालांकि पार्ट वन जिदा मैं दसिया कि वह एवरेज सेगा, लेकिन पार्ट टू जरा उसने कमाल करता सगा। सो फिल्मी दुनिया की होर गलों बातों लैके मैं तो इसे तरीके जुड़ेंगे, तब तक शांत अलका याग्निक की आवाज़ के आप प्यारा जो ट्रैक इंजॉय करो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर

20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकियां दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अरे तू है भाई तू।
1: ओके आई नो ब्रदर,
2: सो IPL की अगर आज की गल करी जाए तो लखनऊ जी है वो प्ले ऑफ द रेस तो टोटली बाहर हो गई। चेन्नई ने 5 विकेट तो हराया, लेकिन इस पूरी गेम के अगर कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे वो रहे उर्वल पटेल, जिन्होंने IPL का सब तो घट गेंदा 50 लगाता जो रिकॉर्ड है उसकी बराबरी करी, 13 बॉलों 50 लगाई है। इस तुला जिमी ओवरटन जोड़े है उन्होंने 3 विकेट मिले हैं। दस दिए कि अज तो इस मैच के नाल ऋषभ पंत की जी टीम है वो अगर सारे मैच जित भी लेंदी है तो उन्होंने को जी मैक्सिमम पॉइंट्स जो अर्न कर सकते वो सिर्फ और सिर्फ 12 है, तो इस दे नाल वो क्वालीफाई नहीं कर सकते। चपॉक स्टेडियम के चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने अज सवेरे टॉस जितया तो उन्होंने पहला बॉलिंग जी डिसाइड की। लखनऊ ने स्टार्ट जो है बहुत ही बेहतरीन किया, तो उन्होंने एक बहुत ही जरा गुड टोटल सेगा वो बोर्ड के उत्ते सैटअप किया, 8 विकेट दुगा के उन्होंने 203 रन बनाए। लेकिन चेन्नई अज पूरे फॉर्म के उन्होंने 19.2 ओवर 5 विकेट गवा गया, टारगेट जरा चेस कर लिया। आखिरी ओवर शिवम दुबे ने एडन मार्क्रम की गेल से ओवर लगातार 2 छक्के मार के अजा टारगेट से वो अचीव कर लिया। लेकिन जिदा मैं क्या कि उर्विल पटेल जोड़े से वो अज सब तो ज़्यादा हाईली सेंटर्ड परसन रही, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 13 बॉलों के जी 50 है वो मारी, तो उन्होंने यशस्वी जायसवाल के 2023 के बनाए हुए रिकॉर्ड 13 बॉलों 50 की जी अज बराबरी कर ली है। इस तो अलावा KL राहुल ने 14 बॉलों 50 मारी है, पैट कमिंस ने भी 14 बॉलों 50 मारी, तेरा मारियो शाफट है जिन्होंने 2025 के 14 गेंदा 50 मारी सी। अगर उर्विल पटेल की इनिंग्स में आप छोड़ दिए तो उस तो अलावा चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने 42, संजू सैमसन ने 28 और कार्तिक त्यागी ने 20 रन जोड़े से बनाए थे। लखनऊ के दिवेश राठी और शहबाज दो दो विकेट मिले थे, 1 विकेट जो है आवेश खान को मिले। उस तो पहले लखनऊ वालों जॉश इंग्लिश ने आज सिर्फ 33 गेंदा दे विच 10 चौके और 6 छक्के लगा के 85 रन की जी इनिंग्स खेली ना वो कितना कि लखनऊ वास्ते एक गुड फाइंडिंग्स रही। शहबाज ने भी आखिर के 43 रन जरूर बनाए, लेकिन वो सब चीज़ा जिमी ओवरटन वास्ते बिल्कुल भी भारियां पै गई। उन्होंने 36 रन देकर 3 विकेट जोड़े ले, उस तो बाद अंशुल कंबोज ने भी 2 विकेट ले, तो 1 विकेट नूर अहमद नू मिले। तो उन्होंने जोड़ा टारगेट नियर अबाउट 220-230 नज़र आ रहा है उन्होंने 10 तो 20 रन तक जोड़ा वो बना लिया। इस अलावा जो दूजा मैच है इस टाइम मुंबई तो RCB के चल रहा, तो दस दिए कि इस मैच की अगर लाइव अपडेट की गल करिए RCB ने मुंबई न बैटिंग करते हुए इस टाइम हाले 132 रन 15.2 ओवर 5 विकटा बना दते हैं। रिकल्टन अज बहुत जल्दी आउट हो गए, रोहित शर्मा ने भी 22 रन की इनिंग्स खेली, नमन धीर अज वधिया बैटिंग करके गए 32 गेंदा 47 रन जरूर मनाए। लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव की जी खराब फॉर्म है वो हाले भी चल रही है, तो उन्होंने स्लिप तो भुवनेश्वर कुमार की गेंद विराट कोहली ने बहुत ही खूबसूरत कैच जरा वो फड़िया। तिलक हाले तक स्ट्रगल कर रहे हैं, टीम नागे तक लैके जाने की कोशिश कर रहे, 35 गेंदा 45। तो विल जैक्स जिहड़े कि हुणे नमनदीर दे आउट होने तो बाद आए से वो भी 10 गेंदा 10 रन बना के आउट होकर चले गए। तो अगर RCB की गेंदबाजी की गल की जाए तो भुवनेश्वर कुमार ने हले तक 3 ओवर 3 विकटा लैके 17 रन दिते है, तो हेजलवुड विकेट कोई नहीं लेती लेकिन 3 ओवर सिर्फ 27 रन खर्चे। रसिक ने 2 ओवर 1 विकेट लैके 24 रन, शेफर्ड ने 2.2 ओवर 1 विकेट लैके 14, इस्तबक करनाल ने 3 ओवर 26 रन दिते, सुरेश ने 2 ओवर 21 रन दिते है। तो इस टाइम मुंबई का जरा प्रोजेक्टेड स्कोर नज़र आ रहा है वो नियर अबाउट 170 के आसपास हो रहा है। मुंबई वास्ते यह मैच जितना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मुंबई यह मैच हार जाती है लखनऊ वंग अज वो भी इस रेस तो बाहर हो जाएगी क्वालीफायर्स से। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चाहेगी कि वो यह मैच जीत के टेबल के टॉप से चल जाए।

शामी गज़ल की इस महफिल में मैं आपका दोस्त सचिन आपके साथ जुड़ गया हूँ। कुछ कहानियाँ, कुछ प्यारी गज़लें और कुछ वक्त को रोक देने वाली बातें। आज की ये कहानी मदर्स डे के लिए। शहर की तेज भागती जिंदगी में आदित्य इतना व्यस्त हो गया था कि उसे तारीखें तो याद रहती थी, लेकिन रिश्ते वो भूलने लगा था। सुबह ऑफिस, दिन भर मीटिंग, रात को मोबाइल और लैपटॉप, बस यही उसकी दुनिया बन के रह गई थी। गांव में उसकी माँ अकेली रहती थी। हर रोज शाम को दरवाजे पर बैठकर पड़ोसियों से बस एक ही बात कहती, मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया है, बहुत काम करता है वो। लेकिन सच ये था कि माँ हर रात उसके फोन का इंतजार करते करते थक कर सो जाती थी। एक दिन अचानक आदित्य की छोटी बहन का फोन आया, भैया इस बार मदर डे पर घर आ जाओ ना, माँ कुछ नहीं कहती पर बहुत याद करती है। आदित्य ने जल्दी में जवाब दिया, हाँ हाँ देखता हूँ, बहुत काम है। लेकिन उसी रात ऑफिस से लौटते वक्त उसने सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा। वो पुराने कपड़े बेच रही थी। उसकी साड़ी बिल्कुल वैसी थी जैसी उसकी माँ पहना करती थी। अचानक उसे बचपन याद आ गया, बरसात की वो रात जब स्कूल की फीस भरने के लिए माँ ने अपनी नई साड़ी वापस दुकान पर बेच दी थी। उसे याद आया कैसे माँ खुद पुराने कपड़े पहनती थी, लेकिन हर त्योहार पर उसके लिए नए कपड़े लाती थी। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। अगली सुबह वो बिना बताए गांव पहुंच गया। घर का दरवाजा खुला था, माँ आंगन में बैठकर उसकी बचपन की तस्वीरें देख रही थी। उसे देखते ही माँ मुस्कुराई, अरे बेटा अचानक खाना खाया कि नहीं? आदित्य ने देखा माँ आज भी वही पुरानी फीकी साड़ी पहने थी। उसकी आंखें भर आईं। वो माँ के पास बैठ गया और बोला, माँ मैंने आपको बहुत अकेला छोड़ दिया ना। माँ हल्का सा हंसी, पगले माँ बच्चे से शिकायत नहीं करती, बस उसका इंतजार करती है। इतना सुनते ही आदित्य माँ के गले लगकर रो पड़ा। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया दुनिया की सबसे महंगी चीज समय है और सबसे कीमती रिश्ता माँ। माँ की दुआओं में वो ताकत होती है जो किस्मत बदलने की हिम्मत रखती है। खुद भूखी रहकर जिसने हमें खिलाया, उस माँ से बड़ा कोई ना मोती है। श्यामे गजल के इस महफिल में आज मदर्स डे पे कुछ कहानियां हम सब की माँ के नाम, जिन्होंने हमारे लिए जितना किया उतना कम। आज

रात के करीब 11 बजे थे। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। हर कोई अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, लेकिन एक बूढ़ी माँ प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठी बार बार घड़ी देख रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा टिफिन था। पास खड़े चाय वाले ने पूछा, माँ जी किसका इंतजार कर रही हो? माँ मुस्कुराई, मेरा बेटा शहर से आ रहा है। बचपन में उसे मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद थे। ट्रेन आई, लोग उतरने लगे, लेकिन बेटा नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक फोन आया, माँ सॉरी बहुत काम था, मैं नहीं आ पाऊंगा। माँ ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बेटा, काम जरूरी होता है। फोन कट गया, लेकिन माँ की आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। चाय वाले ने देखा, माँ ने टिफिन खोला और पराठों को ऐसे देखा जैसे उसमें बेटे का बचपन रखा हो। फिर खुद से बोली, जब छोटा था ना, मेरे बिना खाना नहीं खाता था। उस रात स्टेशन की भीड़ बहुत थी, लेकिन उस माँ की तन्हाई सबसे ज्यादा थी। माँ इंतजार भी बड़ी खामोशी से करती है, ना शिकायत ना गिला करती है, बस दुआ देती है उम्र भर, और औलाद इसे मोहब्बत नहीं फर्ज समझती है। शामे गजल की यह महफिल आज मदर्स डे पर माँ के नाम की कुछ कहानियों के साथ, और मैं आपका दोस्त सचिन इन कहानियों को लेकर चलता रहूंगा रात 10:30 तक। अगली आवाज जगजीत सिंह की।

नेहा अपनी अलमारी साफ कर रही थी कि उसे एक पुराना टिन का डिब्बा मिला। उसमें रखे थे उसके बचपन के टूटे खिलौने, वो पहला रिपोर्ट कार्ड, छोटी सी फिराक और एक पुराना सा कागज। उस पर मां ने लिखा था, मेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी शायद मुझे वक्त कम दे पाए, लेकिन मैं उसे हर दिन उतना ही प्यार करूंगी। नेहा की आंखें भर आई। उसे याद आया कि पिछले कई दिनों से उसने मां के साथ बैठकर चाय भी नहीं पी थी। वो दौड़कर मां के पास गई और बस गले लग गई। मां के बिना घर सूना लगता है, हर रिश्ता अधूरा लगता है। जो सिर पर हाथ रखते प्यार से, वो पल खुदा का तोहफा लगता है। शाम गजल के इस महफिल को अब मुझे समेटने की इजाजत दीजिए। आज ये कहानियां हम सब की जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण इंसान, उस माँ के लिए, जिसे शायद जिंदगी की बाग दौड़ में हम कहीं भूल आते हैं, लेकिन वो हमें कभी नहीं भूलती। और शायद जब तक हमें एहसास होता है तो हम उस माँ को अपने से बहुत दूर खो चुके होते हैं। तो आज चाहिए कुछ पल उस माँ के साथ बैठिए, कुछ पुराने किस्से अपने सुनाइए, कुछ दिल की बातें उसकी सुनिए। अलविदा कह रहा हूँ शाम गजल के इस महफिल के साथ, लेकिन 10:30 मिलूंगा बैक टू बैक सॉन्ग्स, एक प्यार का नगमा है मैं, वापस इस आखिरी गजल के बाद।

एक प्यार का नगमा है। अगले आधे घंटे तक बैक टू बैक सॉन्ग्स लेके चलेगा आपका दोस्त सचिन आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन 102.7 FM रेनबो पर।